0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
6: Ladies and gentlemen.

0: follow me up. Cho cho cho, sin darle me en el camino.
1: Club Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
2: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
3: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: Tera kya hoga, Kalia?
8: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
7: Ab, mirchi kha.
9: Radio Mirchi, it's hot.
10: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन,

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा.
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड.

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। फेस्टिव सीजन का स्पार्कल, वीकेंड की मस्ती और म्यूजिक जो सीधा मूड पे हिट करे। स्टे राइट हियर बिकॉज़ द पार्टी इज ओनली गेटिंग स्टार्टेड बेबी।

वीकेंड का मूड ऑन है, फेस्टिव वाइब्स इन द एयर और पार्टी का वॉल्यूम ऑलरेडी फुल. हेलो एंड वेलकम टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मी मिर्ची और योंतिका, जहां म्यूजिक रुकता नहीं, एनर्जी थकती नहीं और हर बीट के साथ सेलिब्रेशन थोड़ा और लाउड हो जाता है. सो लेट्स बिगिन दिस पार्टी. हियर वी गो.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: ओह नो,
3: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
4: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
5: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
4: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
6: Ladies and gentlemen.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
2: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
3: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
2: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
4: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
2: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट। ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो।

आज इस मुबारक मौके पर मैं आप लोगों को मेरी और कामिनी की दास्तान सुनाना चाहता हूं, मोहब्बत की दास्तान।

आज इस मुबारक मौके पर मैं आप लोगों को मेरी और कामिनी की दास्तान सुनाना चाहता हूं, मोहब्बत की दास्तान।

मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची। वीकेंड का मूड ऑन है, फेस्टिव वाइब्स इन द एयर और पार्टी का वॉल्यूम ऑलरेडी फुल। हेलो एंड वेलकम टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मी मिर्ची और योंतिका, जहां म्यूजिक रुकता नहीं, एनर्जी थकती नहीं और हर बीट के साथ सेलिब्रेशन थोड़ा और लाउड हो जाता है। सो लेट्स बिगिन दिस पार्टी, हियर वी गो। आंधी बन के आया हूं।

मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका, फेस्टिव सीजन का स्पार्कल, वीकेंड की मस्ती और म्यूजिक जो सीधा मूड पे हिट करे। स्टे राइट हियर बिकॉज़ द पार्टी इज ओनली गेटिंग स्टार्टेड बेबी।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा.
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो
5: ऑन अ राइड.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन,

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा.
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट. You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mir-

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट,
5: लेडीज एंड जेंटलमैन।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: साथ जीतू राज, only on मिर्ची, it's hot.
2: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3. नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी. अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए. अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान की फिल्मों को मिलती है. अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी. अजय देवगन, यू आर अ रॉक स्टार. फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं. एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी. जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले. एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन. विजय साळगावकर क्या करता है. फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था. जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है. डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव. प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज. हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड. दृश्यम 3 बाय जीतूराज, 3.5 मिर्चीज के साथ. अजू बेबी, यू रॉक स्टार, वी लव यू.
1: साथ जीतूराज, only on Mirchi, it's hot.
3: लिसनर है, मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा,
4: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
3: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
5: Ladies and gentlemen, we are gonna go. We are gonna go. We are gonna go.
6: On a ride.

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। फेस्टिव सीजन का स्पार्कल, वीकेंड की मस्ती और म्यूजिक जो सीधा मूड पे हिट करे। स्टे राइट हियर बिकॉज़ द पार्टी इज ओनली गेटिंग स्टार्टेड बेबी।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Tera kya hoga, Kalia?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा.
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
3: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go on a ride.
0: Club Mirchi.

आज इस मुबारक मौके पर मैं आप लोगों को मेरी और कामिनी की दास्तान सुनाना चाहता हूं, मोहब्बत की दास्तान।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Radio Mirchi, it's hot. 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Mirchi Bioscope. Saad Jeeturaj. Only on Mirchi. It's hot.
2: And अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3. Now for people जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी. अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए. अजय देवगन रॉल्स. फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान की फिल्मों को मिलती है. अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी. अजय देवगन, यू आर अ रॉक स्टार. फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं. एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है. फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी. जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर. तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले. एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन. विजय साळगावकर क्या करता है. फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था. जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है. डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव. प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज. हमारी टीम के तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड. दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ. अजू बेबी, यू रॉक स्टार, वी लव यू.
1: Only on Mirchi, it's hot.

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Ben.
1: Barrel. Yeah. भाई तेरा बस लिखते गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौको ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @mirchijituraj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज, only on Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's
2: hot. 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.

92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: का समय।
1: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
2: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: Energy. It's hot.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: डिजिटल एरा में अपनी मेंटल पीस को प्रोटेक्ट कैसे करें, आइए समझते हैं।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: सिस्टर, कभी कभी क्या होता है जब मैं कई लोगों से बात करता हूं और वो कुछ शेयर करते हैं, आपने सोशल मीडिया के द्वारा या किसी मैसेजिंग ऐप के द्वारा कुछ फॉरवर्ड किया, तो कुछ लोग होते हैं, ज्यादातर आप नोटिस करते हैं ट्रेंड है, वो ज्यादातर नेगेटिव चीजें ही भेजते रहते हैं, एक तरह का पैटर्न बनता है। तो जब मैं उनसे बात करता हूँ, कहते हैं नहीं, मैं तो तुम्हें आगाह कर रहा था कि इस तरह की चीजें होती है दुनिया में, तुमको आगाह हो जाना चाहिए। तो मैं उनको बोलता हूँ, वो तो मुझे समझ में आ गया, ये सेम कॉन्टेंट मेरे पास भी है, मतलब देख तो मैं भी सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे बोलने की कोशिश कर रहे हैं या आप सिर्फ नेगेटिविटी फैला रहे हैं। एक तो होता है ना, मैं खुशी वाले गाने सुनता हूँ और एक मैं दर्द भरे गाने ही सुन रहा हूँ, तो कुछ तो दिक्कत है ना। मतलब कभी आप खुशी वाले भी सुने, कभी आप दर्द वाले भी सुने तो ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ दर्द वाले गाने मुझे भेज रहे हैं तो कुछ तो दिक्कत है। तो ऐसे केसेस में ऐसे लोगों के साथ उनको क्या सलाह दे सकते हैं या आप क्या कर सकते हैं ताकि वो नेगेटिविटी आप तक ना पहुंचे?
5: ज्यादा तो देखो, अपने को ही प्रोटेक्ट करना होता है। आप कितनों को कहेंगे, फिर भी अगर कोई नजदीक वाला है, आप उनको जरूर कहें कि ये प्रकार का कंटेंट मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैंने ये भी देखा है कि जब हम किसी चीज को रिस्पॉन्ड ही नहीं करते या रिएक्ट ही नहीं करते, तो भी सामने वाला भेजना बंद कर देता है। उसको समझ आता है कि इसको इस प्रकार के कंटेंट में इंटरेस्ट नहीं है। पर खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी आप कंज्यूम करेंगे, मन को प्रोसेस करना ही पड़ता है,
4: वो जाएगा ही आपके दिमाग में।
5: मतलब वो चीज आप फोन से डिलीट कर सकते हैं,
4: मन से नहीं
5: डिलीट कर सकते।
4: सही बात।
5: ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मर्ज हो जाए वो अलग बात है। हाँ। मर्ज ही होती है, भूल तो सकते नहीं, डिलीट हो नहीं सकती।
4: अच्छा।
5: न्यू इन्फॉर्मेशन आएंगे तो वो मर्ज हो जाती है। हाँ। मतलब कॉन्शियस लेवल पर आप उसके बारे में नहीं सोच रहे,
4: वो सब मर्ज हो जाती, बाद में कभी आएगी वापस आपके दिमाग।
5: नेचुरली अगर कोई चीज उसको ट्रिगर करेगी, सिमिलर चीज है जिसने उसको ट्रिगर किया, तो वो वापस रीइमर्ज हो जाती है। लेकिन जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, और हम ज्यादातर नेगेटिव कंज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है दुनिया में ब्यूटीफुल हो नहीं रहा है। कभी कभी हम पॉलिटिकल बातें हैं, वायलेंस है, ये सब अगर बहुत ज्यादा ले लेते हैं।
4: हाँ।
5: और अभी ओवर कंजम्पशन भी हो गया
4: जी।
5: एक्चुअली एक समय था जब हमें दुनिया के बारे में इतना कुछ पता ही नहीं होता था,
4: क्योंकि हम देख ही नहीं रहे थे
5: अवेलेबल भी नहीं था।
4: हाँ।
5: अवेलेबल भी नहीं था। अभी तो दिन भी शुरू नहीं होता।
4: हाँ।
5: 8-9 भी नहीं बजे होते। वी हैव सो मच इन्फॉर्मेशन।
4: सही बात।
5: एंड वेरी वेराइटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। मना हम, और कई बार वो चीज हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी फील करा देती है, सैड भी फील करा देती है, बिकॉज वी कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग आर लाइव्स। कहीं पर हम दुख देख रहे हैं, कहीं पर हम देख रहे हैं 17-year-old बहुत सफल है, कहीं पर हम देख रहे हैं कि, और अभी तक हमारा दिन शुरू नहीं हुआ, पर हम औरों की स्टोरीज देखकर, औरों की रियल लाइफ देख करके अंदर से थोड़े से उदास भी हो जाते हैं। आई डोंट थिंक द माइंड कैन प्रोसेस सो मच, वो नहीं कर सकता। और अगर फिर भी उसको देना है तो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देना चाहिए जो आपका एंथुजियाज्म बढ़ाए, आपकी हिम्मत बढ़ाए, यू लुक फॉरवर्ड टू द डे। इन्फॉर्म्ड होना एक चीज है, लेकिन उस चीज को कंटिन्यूसली कंज्यूम करना और सोचना कि वो आपके ऊपर इफेक्ट नहीं देगा, ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल खाने की तरह है। आप जंक फूड खाएंगे तो आप कहने बस टेस्टी है, मुझे अच्छा लगता है, बट इट विल हैव एन इफेक्ट ऑन योर बॉडी। आप जंक इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करेंगे, इट विल हैव एन इफेक्ट ऑन योर माइंड।
1: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: क्या आपका मॉर्निंग रूटीन आपकी प्रीवियस नाइट की रूटीन पर डिपेंड करता है? आइए इस कनेक्शन को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि धीरे धीरे क्या होता है कि बहुत सारी चीजों का इफेक्ट आपके दिमाग पर होता है, वो सबमर्ज हो जाती है, आपको ये बहुत बाद में पता चलता है। तो कई बार क्या होता है, आप सुबह उठते हैं एंड आपको लगता है आई एम नॉट माई सेल्फ टुडे। कभी आप इरिटेबल उठते हैं, या हो सकता है सुबह सुबह ना हो, थोड़ी देर बाद हो, आप कोशिश करते हैं कि आप सही रहें, लेकिन ज़रूरी नहीं आपका दिन सही शुरू हो। ऐसा आपके साथ भी अगर होता है तो क्या करती हैं उसको चेंज करने के लिए?
4: मॉर्निंग का कनेक्शन बहुत ज़्यादा रात से है।
3: हाँ,
4: आप कैसे उठेंगे वो डिपेंड करता है आप कैसे सोए हैं
3: जी,
4: जिस पर बहुत अटेंशन कई बार लोगों का नहीं होता। लॉट ऑफ पीपल वॉन्ट टू गेट अप अर्ली एंड गेट अप फ्रेश, बट आप जल्दी उठने की मेहनत नहीं करें। आप जल्दी सोने और सोने से पहले कुछ एक एक्सरसाइजेस होनी चाहिए माइंड की, जो आपको एक अच्छी डीप स्लीप दे। तो मोस्टली अगर आप आज आप देखें लोग कैसे सो रहे हैं, वो कंटेंट कंज्यूम करते करते सो जाते हैं
3: जी,
4: चाहे वो टीवी के ऊपर है, नेटफ्लिक्स है, स्क्रोलिंग है, रील्स है, तो आप डीप स्लीप में नहीं जा सकते क्योंकि आपने बहुत सारा कंटेंट ले लिया और मन उसको प्रोसेस करने में है, तो माइंड को रेस्ट नहीं मिलता। दैट इज वन ऑफ द रीजन आप इरिटेबल उठते हैं। आपकी बॉडी सोई है लेकिन मन को जो मन और थक गया है, तो मन जब उठता है वो और एग्जॉस्टेड होता है, और फिर कभी कभी हम कहते हैं 5 मिनट और, तो जो 7-8 घंटे में नहीं हुआ वो 5 मिनट में कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए रात को सोने से पहले आधा घंटा थोड़ा साइलेंस में अपने साथ बिताना चाहिए, चाहे आप जर्नलिंग करें। ग्रैटिट्यूड एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, हम भूल जाते हैं, हमारी इतनी लाइफ से एक्सपेक्टेशन, ब्लेम, कंप्लेन, अम्बिशंस, डिजायर्स हैं कि जो हमें मिला है उसके प्रति जो एक कांस्टेंट ग्रैटिट्यूड होना चाहिए वो कम हो जाता है। तो ग्रैटिट्यूड 3 बातें, ज्यादा नहीं तो 3 बातें जिसके लिए आपको शुक्रिया है, और अगर मन में कोई भी प्रकार का वेस्ट है तो सोने से पहले उसको खत्म करें
3: जी,
4: अगले दिन तक उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करें। अपने साथ बातें करना सीखें, दूसरों से हम बहुत बातें करते हैं, अपने साथ बातें करना सीखें, उस चीज को फुल स्टॉप लगाकर, उसने क्या सिखाया, उसमें क्या बेनिफिट था, हाउ डिड इट मेक मी अ बेटर पर्सन एंड हाउ कैन आई डू इट डिफरेंटली, अगर ये सीन आती है तो थोड़ा अगर हम ये करके सोएंगे तो बहुत चांसेस हैं आप मॉर्निंग में इरिटेबल नहीं होंगे। फिर भी फॉर सम रीजन अगर आप उठते हैं और अगर आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है, किसका मन है आखिर?
3: हमारा है,
4: मेरा मन है ना, मेरी सुनेगा।
3: अच्छा,
4: हम माइंडफुल नहीं है तो मन कह रहा होता है, मन नहीं कर रहा, आज दिल नहीं हो रही, आज ये करने के दिल नहीं हो रही, तो वो आपकी एनर्जी को क्या कर रहा है?
3: डिप्लीट कर रहा है,
4: डिप्लीट कर रहा है। लेकिन मेरा मन है ना, मन को जैसे चाहे चला सकते हैं, दैट इज मेंटल टफनेस।
3: सही बात,
4: दैट इज वॉट मेक्स पीपल हु आर यू नो वेरी वेरी सक्सेसफुल डिफरेंट, क्योंकि वो अपने मन के, वो मन के अनुसार नहीं चलते,
3: मन उनके अनुसार चलता है,
4: वो अपने मन को चलाते हैं।
3: हाँ।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अच्छी हैबिट्स को डेली रूटीन का हिस्सा बनाकर अपनी लाइफ को बेटर कैसे बनाएं? आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: अब कुछ लोग हैं जो आपने कहा बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनकी बुद्धि बहुत तेज होती है और वो अपने मन पर लगाम लगा पाते हैं। अब कुछ लोग हैं जो शायद वीक हैं और उनके लिए थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा ये करने के लिए, और कुछ लोग हैं जो बीच में हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कुछ एक एक्सटर्नल चीज़ें चाहिए। जैसे मेरे साथ कई बार होता है कि जब मैं ऐसे थोड़ा सा डाउन होता हूँ, ख़राब मूड में होता हूँ, तो मेरे लिए सॉन्ग्स डू अ वेरी गुड थिंग। मैं कोई ऐसा गाना लगा लेता हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसको हम अलोंग करता हूँ और 5 से 10 मिनट के अंदर माई मूड गोज बैक टू नॉर्मल या बहुत अच्छे मूड में आ जाता हूँ। तो ऐसी कोई चीजें हैं जो आपको लगता है कि ये अगर आपको एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़े तो आप ये भी कर सकते हैं।
4: सॉन्ग्स बहुत अच्छी चीज है, लेकिन दो तरीके से कई बार हम यूज करते हैं उसको। एस्केपिज्म की तरह नहीं यूज करना। कुछ सॉन्ग्स ऐसे होने चाहिए जिनके वर्डिंग्स
3: अच्छे हों।
4: ऐसे वर्डिंग्स होने चाहिए जो आपके अंदर बहुत उमंग क्रिएट करते हैं, और होने चाहिए। हर एक के पास 2-3-4 सॉन्ग्स ऐसे हों जो गीत आपको उमंग के अंदर ले आए। दैट इज वन थिंग। रीडिंग,
3: हाँ बिल्कुल अच्छी चीज।
4: कोई एक अच्छा कोट, कोई 4-5-6 कोट आपके पास ऐसे लिखे हुए होने चाहिए। और वो कभी कभी क्या होता है, जिस समय आवश्यकता नहीं होती तब भी आपको वो कोट आपको मिला होता है, एंड यू रेड इट एंड यू फेल्ट रियली गुड। इट कुड बी एनीथिंग, लेकिन वो कोट अगर आप वापस पढ़ते हैं तो हो सकता है कि वो चीज आपको वापस उमंग दिलाती है या इंस्पायर करती है या हिम्मत देती है। कोई कोट हो सकता है, कोई स्टोरी हो सकती है, कोई अपने ही पास्ट का एक्सपीरियंस हो सकता है।
3: बिल्कुल,
4: एक डायरी होनी चाहिए जिसके में हमारे एक्सपीरियंसेस लिखे हुए हैं, और अपने ही एक्सपीरियंसेस कभी कभी हमें बहुत उमंग देते हैं।
3: हाँ।
4: तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर मदद करती हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Escapism क्या है और हम रियलिटी से बचने के लिए उसका सहारा क्यों लेते हैं, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, एक आपने बात कही कि कभी कभी क्या होता है जब आपका मूड अच्छा नहीं होता और आपने कोई एक्सटर्नल हेल्प लिया, जैसे आपने गाने सुने या आपने कुछ पढ़ा, और वो एस्केपिज्म नहीं होना चाहिए। तो इस बारे में मैं थोड़ा आपसे ज्यादा जानना चाहता था कि कभी कभी क्या होता है कि आप सब कुछ भूल के बोलते हैं यार मुझे ना अपने मूड को ठीक करना है। तो अगर मैं एस्केप भी कर रहा हूँ 10-15-20 मिनट के लिए, उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि इट इज हेल्पिंग मी फिक्स माई मूड एंड मेरा दिन बेहतर होगा, मैं लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। तो अगर मैं 15 मिनट के किसी और चीज में एस्केप होता हूँ जिसका एडिक्शन नहीं है, एक तो होता है मैंने एडिक्शन में एस्केपिज्म किया, और एक है कि मैं अपनी दुनिया में, म्यूजिक की दुनिया में खो गया और उससे बाहर निकला अच्छे मूड में, उससे दिक्कत क्या है?
4: दिक्कत उससे नहीं है, दिक्कत ये है कि एक होता है किसी चीज से किनारा करना, दूसरा है उसको हील करना। 15 मिनट के बाद भी अगर आप यू फील कि वो 15 मिनट्स आप सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो 15 मिनट्स अगर आप नहीं लेते तो हो सकता था कि आप रिएक्ट कर देते। सो यू आर टेकिंग दैट 15 मिनट ब्रेक,
3: आप किनारा कर रहे
4: सो दैट यू कैन रिस्पॉन्ड, दैट इज ओके। बट वो 15 मिनट्स इसलिए नहीं होना चाहिए कि आपको लगेगा कि 15 मिनट्स के बाद वो बात गायब हो जाएंगे।
3: हाँ, ये बहुत जरूरी है,
4: बात कभी गायब नहीं होती है।
3: सिचुएशन तो वही रहेगी,
4: सिचुएशन है, कोई चैलेंज है, कोई प्रॉब्लम है, आपको उसको फेस तो करना है ना।
3: सही बात।
4: बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इट इज यू नो आप थोड़ा एंगर बिल्ट इन हो रहा है, या आप जजमेंटल हो रहे हैं, या आप गॉसिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या आपको लगता है मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं जो मैं रिग्रेट करूंगा, तो उस समय किनारा हो जाना और कोई ऐसी चीज को यूज करना जो आपको काम करे। इट कुड बी मेडिटेशन फॉर मी, इट कुड बी म्यूजिक फॉर यू, इट कुड बी पेंटिंग फॉर समबडी, इट कुड बी जस्ट सिटिंग इन साइलेंस फॉर समबडी, रीडिंग समथिंग। लेकिन वो किस लिए था? आप अपने को प्रोटेक्ट कर रहे थे और अपने को वापस अपनी ओरिजिनल जो स्टेज है पीस की काम में उसमें लेकर आ रहे थे, विच इज अ वेरी गुड थिंग, करना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो भी बात है
3: उसको तो हैंडल करना,
4: उसको तो हैंडल करना ही है ना। उससे नहीं किनारा करे, उससे नहीं भागे, फेस इट, लर्न फ्रॉम इट, इवन इफ इट्स अ मिस्टेक, इवन इफ इट्स अ फेलियर, लर्न फ्रॉम इट एंड क्लोज दैट चैप्टर।
3: वेरी नाइस।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: क्या आपका कंटेंट कंजम्पशन आपकी सोच और लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस कर रहा है? आइए इस इम्पैक्ट को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, आपसे जब बात करता हूँ तो कई बार आप कहती हैं कि जो भी आप पढ़ो, जो भी सुनो, जो भी देखो आप, वो पॉजिटिव होना चाहिए, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन मेरे मन में कभी कभी आता है। मैं बचपन से ना बहुत सारे दर्द भरे गीत सुनता हूँ, और दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, इस तरह के गीत सुनता हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मुझे कई बार होता है, मैंने कई लोगों से कहा है कि मुझे सुन के खुशी मिलती है और मैं खो जाता हूँ अपनी दुनिया में। मैं उनको सुन के दुखी नहीं हो रहा हूँ, मैं सैड सॉन्ग सुन रहा हूँ लेकिन बहुत खुश हूँ। तो ऐसा जब कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है मेरे मन में, तो हाउ डू आई बैलेंस इट? जो आप बात कह रही हैं कि नहीं देखो, जो भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो अच्छा होना चाहिए।
4: सिर्फ इट वर्क्स फॉर यू इट इज ओके, बट नॉर्मली क्या होता है, कभी कभी हम उस सैडनेस से रिलेट कर पाते हैं।
3: हाँ।
4: और वो हमारे लिए रिलीज का काम करती है।
3: जी बिल्कुल।
4: तो कभी कभी जब हमने कोई चीज क्रिएट कर दी होती है और वो रिलीज होती है, तो हमें अच्छा फील होता है।
3: हाँ।
4: फॉर एग्जाम्पल, हम कहें कि गुस्सा कर दिया तो अब उसको अंदर नहीं रखो।
3: हाँ।
4: उसको निकाल दो।
3: हाँ।
4: तो अब वो निकालना तो उस समय पर वो बेटर सोल्यूशन लगेगा, क्योंकि अगर आपने उसको अंदर रखा
3: तो बिल्डअप हो जाएगा,
4: आप अपने को हार्म करेंगे, बॉडी हार्म होगी, फिर कहीं ना कहीं पर वो फ्रस्ट्रेशन निकलेगा। सबसे ज्यादा तो वो जो क्रिएट किया हुआ है वो बीमारी क्रिएट करता है।
3: हाँ।
4: जो अंदर की नेगेटिव एनर्जी है, चाहे वो एंगर है, चाहे वो सैडनेस है।
3: हाँ।
4: तो वो आपके सेल्स को इफेक्ट कर रही है, और वो धीरे धीरे आपकी बॉडी को डैमेज करती है। तो फिर अगर आप उसको निकाल देते हैं तो आपको एक रिलीज जैसा लगता है, आपको हल्कापन लगता है।
3: जी।
4: इसीलिए कई बार कईयों को जब वो पुराने गीत सुनते हैं या रो देते हैं या उससे कनेक्ट करके, तो उनको ऐसा लगता है जैसे कुछ रिलीज, हल्कापन, खालीपन लगता है। पर इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप उसको क्रिएट नहीं करें, वो बहुत पावरफुल स्टेज है। अगर आप क्रिएट कर चुके हैं और सप्रेस्ड हो रहे हैं, तो रिलीज करके आपको अच्छा लगेगा। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस, कहीं पर गुस्सा करके, आर्ग्यूमेंट करके, इस प्रकार का देख करके अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ रिलीज हो रहा होता है।
3: तो आप कह रहे हैं कि अगर वो सिर्फ रिलीज हो रहा है और उससे किसी का शायद बुरा ना हो, उस वक्त आप किसी के साथ ना हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपने एकांत में उसको रिलीज कर दिया और वो इमोशन आपसे बह गया तो शायद ठीक है।
4: कैथार्सिस जैसे एक इफेक्ट होता है, हल्कापन। लेकिन समवेयर आपको लर्न तो करना पड़ेगा कि आप उसको न क्रिएट करें।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
2: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
3: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Izzilin।
6: द मॉर्गेज इंडस्ट्री हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स, पर हमारी ऑनेस्ट एडवाइस आज भी वही है।
7: जेसन एंड समीर आर ऑफिशियली रीलॉन्चिंग SD कैपिटल फंडिंग विद अ रिन्यूड फोकस ऑन यू।
6: बाइंग अ होम, आवर रेट सेवर विल बीट योर लॉक्ड रेट।
7: ऑलरेडी अ होम ओनर, ड्रॉप योर मंथली पेमेंट्स विद आवर फ्री रेट अलर्ट सिस्टम। SD कैपिटल फंडिंग, सर्विस जिस पर सब करे भरोसा।
8: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
9: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 Oak Tree Road, Izzilin, न्यू जर्सी।
10: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। It's a journey. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या नेगेटिविटी को बार बार सोचना एक हैबिट बन सकती है? आइए इस पैटर्न को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: हर एक जो बहुत इमोशनल बैगेज क्रिएट करता है, फिर जब वो रोता है या वो फटता है, उसको अच्छा लगता है। वो इतना पेंट अप नेगेटिव एनर्जी है कि वो फट करके या उसको निकाल करके उसको हल्कापन लगता है, बट यू आर स्टिल डैमेजिंग योरसेल्फ। आप अंदर अंदर डैमेज अपना भी क्रिएट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट में भी क्रिएट कर रहे हैं, और आपको हल्कापन लग रहा है, आप उससे रिलेट कर रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे बहुत हल्का लग रहा है। और इसलिए फिर कई लोग कहते हैं रोना बहुत अच्छा है, रोना बहुत जरूरी है, रोने को टैबू नहीं बनाना चाहिए, एवरीबडी शुड क्राई, बिकॉज अगेन इट्स अ वे ऑफ रिलीजिंग, बट वो फिर हैबिट बन जाएगी। जरूरी है कि अगर आप रोने तक आ गए हैं तो अंदर आपने कितना दुख क्रिएट किया होगा। तो आप उसके साथ अगर डील करते जाएंगे, अगर आप उस लेवल तक पहुंच सकते हैं कि आप हर चीज को मैच्योरिटी से डील करें और सदा खुश रहें, तो उसमें गलत क्या है? हम नहीं कर पाते तो हम कहते हैं कभी खुशी कभी गम, फिर वो कभी कभी खुशी ज्यादा ज्यादा कम होने लग जाता है। तो आप जब कोई चीज नहीं कर पाते तो आप दूसरे वाले को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर आप मैच्योरिटी से उससे डील करें और सदा खुश रह सकें, ज्यादा से ज्यादा खुश रह सकें, कम से कम इरिटेशन, कम से कम फ्रस्ट्रेशन, कम से कम एंगर, रिवेंज, बिटरनेस, रिजेंटमेंट, तो लाइफ कितनी अच्छी है। लाइफ तो खुशी से जीनी चाहिए ना, बिटरनेस में थोड़ा ना जीनी चाहिए।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
2: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
2: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
1: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
3: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
4: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
3: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
5: ओह नो!
6: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
7: This festive season, Kalal of New Jersey presents two mesmerizing nights.
8: October 17th, the voice behind the famous Billo Rani, Richa Sharma.
7: And October 18th, the voice behind Barish, Ash King. Book individual tickets or packages now at kalal.com. That is KALLOL.com. Or call 917-440-9266.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.

0: इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या टॉक्सिक पॉजिटिव जैसी भी कोई चीज होती है? आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। सिस्टर श्रेया, एक और सवाल आया है कि मैं निधि प्रोफेशन से हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर हूँ। मैं अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी फैलाती हूँ, बहुत अच्छी बात है। मैं अपने बोर्ड स्टूडेंट्स, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड में पॉजिटिव एनर्जी भरती हूँ, लेकिन अपने साथ वैसा नहीं कर पाती। मेरे साथ जो भी होता है वो नेगेटिव ही होता है, किसी से सपोर्ट नहीं मिलता, मुझे अकेले ही अपने लिए लड़ना पड़ता है। कोई सुझाव है क्या?
3: जब भी हम कुछ करते हैं वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो करना हमें अच्छा लगता है। हम किसी को हेल्प करते हैं, हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें करना अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ को करने के बाद फिर उसमें एक्सपेक्टेशन नहीं डाल देनी चाहिए, मैंने ऐसा किया था तो आपको भी करना चाहिए। वो निस्वार्थ नहीं है। बट इफ़ यू आर चूजिंग टू डू समथिंग देन डोंट मेक इट कंडीशनल। उसके बाद एक्सपेक्ट नहीं करें मैं आज आपके साथ पार्टी पे गई थी, कल आप मेरे साथ चलो। इफ आई एम चूजिंग टू डू समथिंग, आई एम डूइंग इट बिकॉज आई बिलीव इन इट। रिलेशनशिप गिव एंड टेक नहीं होता ना, गिव एंड टेक तो बिजनेस होता है। हम बिजनेस थोड़ी ना करें, कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन थोड़ी ना। उसमें भी आप देखेंगे मेरे लिए जो कम्फर्टेबल होता है मैं वो गिव करते हो। किसी के लिए जो कंफर्टेबल होता है वो करता है। पर मुझे क्या होता है, जो मैंने किया ना वही आपको करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे घर आए थे तो मैंने तो आपके लिए बहुत अच्छा डिनर बनाया।
2: जब मैं आपके घर जाऊँ आपने मुझे सिर्फ चाय
3: भी नहीं पूछी। आपने तो चाय भी नहीं पूछी, आपने अज्यूम कर लिया चाय तो पीकर ही आए होंगे। तो हम कितना हर्ट हो जाते हैं कि वो मेरे घर आए थे तो मैंने कितनी मेहनत करी। अरे आपने इतनी मेहनत इसलिए करी क्योंकि वो क्वालिटी आपकी है, आपको अच्छा लगा।
2: लेकिन ये कह रहे हैं कि मेरे साथ जो भी होता है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ बात दरअसल सिर्फ सपोर्ट की नहीं है कि चलिए सामने वाले के लिए जो मैं कर रहा हूँ शायद वो मेरे लिए वापस नहीं कर रहे हैं, वो आपने समझा दिया। लेकिन मेरे साथ नेगेटिव हो रहा है जबकि मैं सबके लिए पॉजिटिव कर रही हूँ, सोच रही हूँ और व्यवहार फैला रही हूँ, तो क्या करें?
3: मेरे साथ अगर सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, सब कुछ सिंसियरली, तो आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें। हमारे साथ जो होता है, अगर हम स्पिरिचुअल लॉ देखें, स्पिरिचुअल लॉ के अकॉर्डिंग संकल्प से सृष्टि बनती है। जो लॉ कहता है, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन कहता है, आप जो सोचते हैं आप जो है वैसे होता चला जाता है। अगर आप बहुत नेगेटिव पर्सन है तो आपके साथ बहुत नेगेटिव होता चला जाता है। अगर हम कहते हैं नहीं हम बहुत पॉजिटिव हैं, तो एक्चुअली में अगर कोई बहुत पॉजिटिव होता है, समझो कोई बहुत ग्रेटिट्यूड करता है, कोई सबको हेल्प करता है, लॉ के अनुसार उसके साथ जीवन में अच्छा ही होता है। आपको मेजोरिटी लोग कहेंगे अच्छा है, इसके साथ अच्छा ही होता है। समवेयर शी ऑल्सो हैज टू रिफ्लेक्ट कि कहीं ये उनको लगता तो नहीं है। कभी कभी ये भी होता है, हम बाहर अपने एक्शंस में बहुत पॉजिटिव होते हैं
2: लेकिन मन में नेगेटिव सोच रहे होते हैं।
3: मन में बहुत नेगेटिव होते हैं और सृष्टि कर्म से नहीं बनते, संकल्प से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वो सबको मदद करते हैं, सबको सपोर्ट करते हैं, पर अंदर में वो बहुत नेगेटिव है
2: कि यार मैं ही करती हूँ,
3: मैं ही करती हूँ,
2: मेरा तो कुछ नहीं होता, ये मेरे बारे में नहीं सोचते। तो बहुत अच्छी बात
3: है, उनका संकल्प तो नेगेटिव है ना, तो उनके संकल्प से सृष्टि बनती है। तो वो अगर नेगेटिव होंगे तो उनके साथ नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। अगर कोई बहुत नेगेटिव है तो कई बार लोग उनसे दूर भी होना शुरू हो जाते हैं, कंफर्टेबल नहीं फील होता,
2: तो शायद इसलिए भी सपोर्ट नहीं मिल रहा हो। तो निधि, मैं भी आपको अपने पॉजिटिव थॉट्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, कहीं थॉट्स में तो दिक्कत नहीं है। ये
3: इस चीज को पकड़ ले, संकल्प से सृष्टि बन
2: बस।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। It's hot. Rang Reza, Rang Reza.

0: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
2: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
3: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
4: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
3: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
5: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
2: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
5: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
2: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
5: Miss India, aaj hi visit kare, 79 Middlesex Avenue, Islington.
6: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: वहम और गलत फहमी, ये दोनों भी ट्रस्ट ब्रेक करते हैं। वहम और गलत फहमी में अंतर क्या है? दत्ता आपले पुणे से कह रहे हैं। वहम और गलत फहमी में अंतर क्या है? दत्ता आपले पुणे से कह रहे हैं।
3: वहम डाउट है और

0: गए थे, इतनी देर किससे कर रहे थे. इट कुड कम फ्रॉम पास्ट. अगर आपको कभी किसी ने चीट किया है, कभी किसी ने धोखा दिया है, तो आपका डाउट का एक नेचर बन जाता है. अगेन, डाउट अच्छी चीज नहीं है. डाउट आपको भी डिप्लीट करता है, आपका जो वाइब्रेशन है वो सामने वाले को बहुत अनकंफर्टेबल करता है. इनफैक्ट होना तो ये चाहिए, अगर आपको पता भी हो ना कि वो कुछ गलत कर रहा है, तो भी ट्रस्ट करना चाहिए.
1: बिल्कुल.
0: क्योंकि ट्रस्ट फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उनके लिए.
1: हाँ.
0: फिर वो तोड़ नहीं पाते. सो अगेन, डाउट एंड ट्रस्ट इज इन योर माइंड. ये सब चीजें इमोशंस है, आपके मन में है. तो अगर डाउट आप करते हैं तो ट्रस्ट करना शुरू करें. अगेन, आप अगर किसी को डाउट कर रहे हैं, यू पुशिंग देम अवे. एक पेरेंट ही हो सकता है वो डाउट कर रहा है, किधर गए थे, कितने बजे आए, किससे बात कर रहे थे. तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने बच्चे को
1: दूर कर रहे हैं.
0: तो आप अपनी कॉन्वर्सेशन को चेंज करने की कोशिश करें. फिर वो जो डाउट है वो मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्रिएट करेगा ही ना. समझो किसी ने कुछ नहीं भी किया, आप अगर डाउट कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो यही कहेगा ना, आप मेरे पर बहुत डाउट करते हो, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं. फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप में क्रिएट करने लगेगा. When you don't understand yourself, उसका result आपको रिश्तों में misunderstanding दिखाई देगी. When you don't understand yourself and you don't transform yourself, वो वहाँ पर misunderstanding दिखाई देने लगेगी.
1: सही बात.
0: तो इसलिए अपने अंदर अपने से बात करके उसको transform करें.
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
3: कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता. ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अपने वर्ड्स को सोच समझकर यूज करना क्यों जरूरी है, आइए इस बात को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: शब्दों की एक बहुत सुंदर स्टोरी भी है कि एक भिखारी है और देख नहीं सकता है, और वो बैठा होता है स्ट्रीट के नजदीक पर, और एक कार्डबोर्ड पे लिखा होता है कि आई एम ब्लाइंड आई कैन नॉट सी। लोग आते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ से गुजर जाते हैं, कोई ज्यादा कंट्रीब्यूट भी नहीं करता। फिर एक लेडी वहाँ पर आती है, वो कार्डबोर्ड को उठाती है और उसकी दूसरी साइड पर शब्दों को बदल देती है, और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन दिन भर के अंदर बहुत कंट्रीब्यूशन आता है।
2: अच्छा।
3: और उसको बहुत सरप्राइज्ड होता है कि ऐसा क्या वो लिख करके गई कि अभी जो आ रहा है कुछ ना कुछ उसके कटोरे में रख करके जा रहा है। शाम को जब वो लेडी ऑफिस से वापस आ रही होती है, वापस वहाँ पर रुकती है, वो देख तो नहीं सकता पर वो उसको जैसे उसके शूज को टच करता पहचान जाता है। उसको पूछता आपने क्या लिखा, तो उसने कहा मैंने वही शब्द लिखे लेकिन भाषा अलग थी। और उसने लिखा था इट इज अ ब्यूटिफुल डे बट आई कैन नॉट सी, बहुत सुंदर दिन है लेकिन मैं देख नहीं सकता। दैट क्रिएटेड लॉट ऑफ कंपैशन इन पीपल। पहले वो फैक्ट था लेकिन फिर ये जो स्टेटमेंट थी उसने लोगों के अंदर रहम को पैदा किया। तो शब्दों में एनर्जी होती है, शब्दों में शक्ति होती है। हमें बहुत सोच समझ करके अपने शब्द यूज करने चाहिए, क्योंकि ये तीर की तरह है, एक बार ये तीर निकल गया
2: वापस नहीं आता।
3: कहते हैं तलवार का जख्म तो फिर हील हो जाता है, शब्दों का नहीं होता।
2: क्या बात है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
4: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
3: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
5: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
7: 9 nights, 1 divine spirit.
8: Gayatri Chetna Center brings the community together in Piscat Way.
7: Join daily Garba, October 11th to 19th at 7 p.m.
8: Don't miss the Atham Yagya on the 18th, Norm Yagya on the 19th, and Sharad Purnima Garba on the 25th.
7: Gather with family and experience the divinity. Visit GayatriCenter.org.
9: Make your child's party unforgettable this year. Come get your crafty hands on at our creative studio in Marlborough. 26 plus DIY projects, from slime to crafts, all designed around your child's age and theme. And of course, pizza, popcorn and unlimited fun. Visit thecraftyhands.com or call 732-397-0057.
10: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
11: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
10: Shaadi shopping का complete destination, Fashion Queen.
11: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Islington.
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
14: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
15: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी, चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: बिना मांगे एडवाइस देने से क्यों बचना चाहिए, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: हम राय अपनी कैपेसिटी से देते हैं, हम में से कितने लोग राय उनकी कैपेसिटी से देते हैं।
4: सही बात है।
3: इसलिए जहाँ तक मुझे लगता है, जब तक कोई मांगे नहीं देना नहीं चाहिए, और अगर कोई मांगता है तो जरूर ये चीज ऐड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी।
4: सही, बहुत बहुत बढ़िया,
3: मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप देख लें। सेकंड चीज, हम में से बहुत लोग इसलिए अपसेट हो जाते हैं कि सामने वाले ने राय मांगी, मैंने दी, तो भी उन्होंने उस पर चला नहीं।
4: हाँ।
3: तो फिर मांगा ही क्यों था।
4: सही बात, हाँ।
3: वैल्यू नहीं है शायद मेरे राय की।
4: हाँ।
3: ऐसा नहीं होता।
4: हाँ।
3: वैल्यू नहीं होती तो वो आपके पास क्यों आते।
4: हाँ।
3: अगर वो आपके पास आपसे पूछने के लिए आए हैं तो जरूर उनको आपके एक्सपीरियंस की, आपके राय की, एडवाइस की वैल्यू है।
4: हाँ।
3: लेकिन हो सकता है कि उनकी कैपेसिटी और इस समय उनके सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट है।
4: बहुत बढ़िया, समझना जरूरी है,
3: बहुत जरूरी है। इसलिए अपनी राय देकर के फिर न्यारा होना, डिटैच होना।
4: हाँ।
3: और उस व्यक्ति के प्रति गुड विशेस रखना।
4: हाँ।
3: कि आप जो भी चूज करें उसमें आपका कल्याण हो, ये जरूरी है।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
3: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
2: Wait, they can see us on Sunday?
3: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
4: इस बार दशहरा होगी धमाकेदार
5: वो तो होगी ही और तामझाम भी होगी दुगना
6: Yes, only at Indo American Festival INC 28th Dussehra Festival on Saturday 10th October at Lake Papayani Park Edison New Jersey 1 PM to 8 PM
4: Join us for marvelous Ram Leela spectacular Ravan Dahan cultural programs Meena Bazaar and more
1: For details call 732-444-8381 or visit dussehra.com
2: सोना खरीदने के सोच रहे हैं RK Jewels चलिए इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस
7: सुनो ब्राइड्स अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
8: तो आइए फैशन क्वीन यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी
7: शादी शॉपिंग का कम्प्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन
8: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इज़िलिन
9: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है
10: अरे माँ अभी भेजता हूँ टैप टैप सेंड है ना इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में
9: अरे वाह इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट
11: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069
12: रिश्ते विश्वास से बनते हैं रिश्ते निभाने पड़ते हैं ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स
13: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड इज़लिन न्यू जर्सी
14: वाओ यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा
15: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
14: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
15: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
14: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islington.

0: हार्ट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है। अनिल गोयल जी लिखते हैं कि जब दुनिया नेगेटिविटी से भरी लगे तो अपनी पॉजिटिविटी कैसे बचाएं?
3: एक्चुअली दुनिया इतनी नेगेटिविटी से भरी हुई नहीं है जितनी हमें वो पिरोसा जाता है।
2: हाँ,
3: ज्यादातर क्योंकि वो कंज्यूम क्यों करते हैं मुझे भी नहीं पता, पर जो चीज कंज्यूम होती है वो चीज ज्यादा से ज्यादा पिरोसी जाती है, सप्लाई की जाती है। तो फिर हमें अपनी कंपनी को चेंज करना पड़ेगा। हम अगर उन्हीं चीजों के साथ है जहाँ से हमें, चाहे वो न्यूज का प्लेटफॉर्म है या कुछ भी प्लेटफॉर्म है, वो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि वो चारों तरफ नेगेटिविटी है तो कई चीजें चेंज करें। पहला, कंटेंट चेंज करें। कॉन्शियसली ऐसा कंटेंट को कंज्यूम करना शुरू करें जो आपको इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। ऑर्डिनरी लोग बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जो न्यूज नहीं बनती है। मतलब देयर इज सो मच ऑफ काइंडनेस हैपनिंग इन साइलेंस।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: लेकिन अगर वो चीज हम कंज्यूम करते हैं तो वो हमें बेटर व्यक्ति बनाती है। तो एक है कंटेंट, दूसरा है कंपनी, किन लोगों के साथ हम रहते हैं। भले कम हो, भले एक दो हो, लेकिन वो ऐसे होने चाहिए जो गॉसिप नहीं करते हैं,
2: एम्पावर करते हैं।
3: हाँ, मतलब अच्छी बातें करते हैं, एम्पावर करते हैं। एक ये पता नहीं चलता है लेकिन गॉसिप बहुत बड़ा डिप्लीटर है, बहुत बड़ा डिप्लीटर है। आप औरों के बारे में गलत सोच रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, गलत फैला रहे हैं, नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, इट्स अ वेरी बिग डिप्लीटर। फिर दूसरा, कंप्लेन करते रहना, ब्लेम करते रहना। तो कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो एक दूसरे को इंस्पायर करे, आपकी छोटी छोटी चीजों को देख करके खुश हो, आपको आगे बढ़ाए, आपको आगे बढ़ता हुआ देख खुश हो। तो आप, ये भी तो बहुत बड़ी चीज है ना, हैविंग दैट वन फ्रेंड, जब वो देखता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं तो वो इनसिक्योर नहीं है लेकिन आपकी सफलता को देख करके खुश होता है। तो कंपनी होगी, कंपेनियन हो गया, कॉन्टेंट हो गया, ये सारी चीजों का अगर हम ध्यान देते हैं, थोड़ा समय अपने साथ बिताएं, क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी किसकी है, खुद की। तो वो जो इनर थॉट्स हैं वो भी तो बहुत नेगेटिव हो गए हैं ना, तो वो जो इनर कम्युनिकेशन, इनर कॉन्वर्सेशन है उसको कॉन्शियसली पॉजिटिव करें। तो इतनी बुरी दुनिया लगे कि नहीं, एक्चुअली वी डोंट सी द वर्ल्ड एज द वर्ल्ड इज, वी सी द वर्ल्ड एज वी आर। तो हमारा लेंस ज्यादा नेगेटिव हो गया है, दुनिया मुझे नहीं लगता है कि नेगेटिव है।
2: बहुत बढ़िया। और अनिल गोयल जी, मुझे महात्मा गांधी की बहुत कमाल कही हुई एक बात याद आ गई कि उन्होंने कहा था, आई विल नॉट लेट एनी वन वॉक विद देयर डर्टी फीट थ्रू माई माइंड। तो जब आपको लगे कि दुनिया ऐसा कर रही है तो उनको करने मत दो, और जो सिस्टर श्रेया ने बोला, ये सारी चीजें ट्राई करिए, शायद आपकी जिंदगी बेहतर हो जाए।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

मन कस्तूरी रे। जग दस्तूरी रे मन कस्तूरी।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
3: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
2: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
4: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
7: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
8: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
9: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
10: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
9: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
10: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
9: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: Type C cable के साथ phone तो charge कर लोगे, खुद को कैसे charge करोगे? मिर्ची Recharge Mornings, सुबह 6 से 8, only on Mirchi, it's hot.

0: Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर पल्लवी सेन ने एक सवाल भेजा है, लिखती हैं कि लोगों पर ट्रस्ट करना और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना मुश्किल क्यों लगता है और इससे कैसे निकलें?
3: मुश्किल ट्रस्ट करना नहीं है, मुश्किल अंदर में फियर है कि वो बिट्रे नहीं करे।
2: जी, शायद पास्ट में कुछ हुआ हो।
3: पास्ट में हुआ भी हो सकता है, नहीं भी हुआ हो सकता, तो भी आप इतना सब कुछ सुन लेते हैं ना। इतना सुन लेते हैं, इतना देख लेते हैं, तो भी फियर क्रिएट हो जाता है कि ये मेरे साथ ऐसा ना करे।
2: जी।
3: ट्रस्ट एक कम्फर्टेबल फीलिंग है। आप अगर किसी को ट्रस्ट करते हैं तो इस एक्सपेक्टेशन से न करें कि वो बिट्रे ना करेंगे। एक्चुअली आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन जब हम कुछ करते हैं तो उसका बोझ दूसरे पर नहीं डाले, क्योंकि वो वैसे बिहेव करेंगे जैसे वो हैं। हर एक की जो पर्सनालिटी है वो वैसे ही रिस्पॉन्ड करता है, वैसे ही रिएक्ट करता है। अगर हमने चूज किया किसी को ट्रस्ट करना, वो हमारे लिए था क्योंकि हमें कंफर्टेबल था।
2: लेकिन इंसान जब ऑलरेडी परेशान हो चुका है, शायद उसको ट्रस्ट इश्यूज हैं, इसलिए पल्लवी जी लिख रहे हैं कि मेरे लिए मुश्किल होता है, तो दूसरों पर आप बोल रहे हैं कि भैया उनके भरोसे मत चलो, बट जब मैं ऑलरेडी बोलते हैं ना, दूध से जला छास भी फूक फूक के पीता है, तो ऐसे केस में क्या
3: करें ना? ऐसे केस में ये करें, केयरफुल हो जाएं, वेरीफाई करें, एकदम से किसी को ट्रस्ट ना करें। पहले आप देख लें थोड़े समय की वो फ्रेंडशिप आपकी कैसी है। ये जरूरी है कि इस समय, जिस समय से हम गुजर रहे हैं, इसमें ये सब कुछ होता है। लोग धोखा भी देते हैं, बिट्रे भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, समय ऐसा है। तो आप अगर कहें कि नहीं, मैंने तो 100% ट्रस्ट किया था, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपको प्रिपेयर्ड भी रहना पड़ेगा कि ये सब हो सकता है, इसलिए आप ज्यादा केयरफुल हो जाएं। पर केयरफुल होना अच्छी बात है, पर ट्रस्ट करना ही छोड़ देना वो अच्छी बात नहीं है। हर एक को डाउट करते रहना, हर एक को डाउट के नजर से देखते रहना, वो आपको अनकंफर्टेबल फील कराएगा।
2: अब जब मैं इससे गुजर रहा हूँ ऑलरेडी, और ये बात मैं समझ गया कि भाई केयरफुल होना जरूरी है, लेकिन मिसट्रस्ट करना भी, हर आदमी को ट्रस्ट ना करना भी सही नहीं है, लेकिन अब मैं इससे गुजर रहा हूँ, तो क्या एक दो चीजें हैं जो शायद मैं कर सकता हूँ एज अ प्रैक्टिस कि भाई तुम ये करो, शायद आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप ट्रस्ट करने लगोगे लोगों को।
3: इसे थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होना पड़ता है कि ऐसा भी हो सकता है। और कुछ नहीं है एक्चुअली, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। कभी कोई कहेगा मैंने तो बहुत केयरफुल होकर के इसके साथ काम किया, बिजनेस किया, फिर भी इन्होंने मुझे चीट कर दिया। तो आप ट्रस्ट करते हैं, सेकंड नंबर है आप केयरफुल होते हैं, वेरीफाई करते हैं, फिर थर्ड नंबर है क्योंकि दुनिया ऐसी है, आप थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो इट इज ओके, आई विल बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम। हम जिस समय से गुजर रहे हैं वो बड़ा अनसर्टन है, उसमें आप हर चीज के लिए अगर अपने मन को प्रिपेयर कर लेते हैं,
2: ठीक है,
3: आप इन्वोक नहीं कर रहे हैं उसको। दोनों चीजों में बहुत फर्क है। प्रिपरेशन फियर को खत्म कर देती है, प्रिपरेशन एंजाइटी को खत्म कर देती है। जब आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर नहीं होते तो आपको अंदर में एंजाइटी और फियर बना रहता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: दूसरों की सुनिए लेकिन डिसीजन वही लीजिए जो आपको अंदर से सही लगे. आइए इस बैलेंस को समझते हैं.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
3: कभी कभी शायद हम ट्रस्ट करना चाहते भी हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, जो शायद हमारे वेल विशर्स होते हैं, शुभ चिंतक बन के आते हैं शायद, वो हमें बोलते हैं नहीं नहीं तुम्हारे साथ पहला भी ऐसा हुआ, तुम ऐसा मत करो, तुम्हारे साथ यही प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी ट्रस्ट करते हो, तुम्हें पता नहीं दुनिया बहुत बुरी है, ये नहीं करो. तो जब हम कोशिश भी कर रहे होते हैं, कुछ लोग हमें रोक रहे होते हैं. तो ऐसे केस में क्या करें?
4: देखो, लोग जितने होंगे हर एक का अपना ओपिनियन तो होगा ना
3: जी.
4: उनका ओपिनियन आप सुने लेकिन करें वो जो आपको कम्फर्टेबल है. आपको क्या कम्फर्टेबल है? जैसे आप मिसट्रस्ट की बात कर रहे हैं, पिछले दिनों भी मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी जो एक आर्मी मैन का था. वो बार बार अपने इंटरव्यू में कह रहे थे मैं किसी भी चीज को ट्रस्ट नहीं करता. हमें सिखाया ही जाता है कि किसी भी चीज को ट्रस्ट नहीं करना. हम हर एक को मिसट्रस्ट की नजर से देखते हैं. तो सामने वाले ने कहा फिर आप जीते कैसे हैं? कहते वही तो हमें हर चीज के लिए प्रिपेयर करता है. इट इज नॉट कि उसमें जो उनकी छोटी सी बात थी, मुझे याद है कि उन्होंने कहा कि भाई प्रेसिडेंट के आगे ग्लास भी रखा है तो हम वो चीज भी ट्रस्ट नहीं करते.
3: सही बात है.
4: तो वो क्यों ट्रस्ट नहीं करते? क्योंकि हमें नहीं पता कि
3: उसमें क्या है,
4: मतलब किसका क्या इंटेंशन है. वी डोंट नो किसका क्या इंटेंशन है. अगर वो मिसट्रस्ट करते भी हैं तो फिर वो क्या करते हैं? वो उस ग्लास को 10 बार चेक करते हैं.
3: तो ट्रस्ट बट वेरीफाई.
4: एब्सोल्युटली. अब उनका अगर वो रोल है तो वो मिसट्रस्ट, व्हाट इज मिसट्रस्ट लीडिंग टू? प्रिपरेशन. अब इस चीज को समझे ना, अगर आप कुछ चीज को मिसट्रस्ट भी कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप बेटर प्रिपेयर्ड हैं, आपने उस चीज को चेक किया, फिर आपने डोर्स भी बंद कर दिए कि वो ग्लास अभी चेंज नहीं हो सकता है. सो कीवर्ड है प्रिपरेशन. अगर आप उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड होंगे तो आपको इतना उस चीज के प्रति एंजाइटी नहीं होगी. बाकी तो कोई भी आपको लिख करके गारंटी दे करके नहीं कह सकता है,
3: सही बात है,
4: कि आप ये करेंगे तो सामने वाला आपको बिट्रे कर ही नहीं सकता या धोखा दे ही नहीं सकता. हर एक का क्या इंटेंट है हमें नहीं पता. तो हम अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने को प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने को इवॉल्व कर सकते हैं. दुनिया को तो हर समय नहीं बदल सकते.
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया. ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
8: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
8: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन.
9: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
10: आवर बिजनेस वाज गेटिंग रिप्ड ऑफ बिफोर विद हाई प्रोसेसिंग फीस. आई एम सो ग्लैड वी स्विच्ड टू NRS Pay.
11: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
12: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
13: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है.
14: अरे माँ, अभी भेजता हूँ. टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे. टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में.
13: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट.
15: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे. टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069.
16: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
17: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
18: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
17: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
19: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
20: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
19: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
20: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
19: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
21: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, नेत्रा जी का सवाल आया है। वो लिखते हैं कि अपने किसी करीबी को बीमारी के बाद बदलते हुए देखना बहुत पेनफुल होता है, ऐसे सिचुएशन में खुद को कैसे संभालें?
3: पहले तो ये समझना कि लोग बदलते हैं, वेदर फॉर गुड और बैड, लेकिन वो बदलते हैं। और एज अ ह्यूमन बीइंग हमें ना चेंज अच्छा नहीं लगता। हम कहीं में कह भी देते हैं कि आप बहुत बदल गए हैं, बट कभी कभी सर्कमस्टांसेस, एक्सपीरियंसेस, ट्रॉमा व्यक्ति को बदल देते हैं। अब वो बदलना जो है वो अच्छे के लिए भी हो सकता है, बुरे के लिए भी हो सकता है। तो पहली चीज चाहिए एक्सेप्टेंस। फर्स्ट चीज है कि सामने वाला अगर बदल रहा है किसी भी ट्रॉमा के कारण, एक्सेप्टेंस फॉर द पर्सन, बदलाव के लिए नहीं। हो सकता है कि वो बदलाव उनके लिए भी अच्छा नहीं है,
2: सही बात।
3: लेकिन व्यक्ति के लिए एक्सेप्टेंस क्यों नहीं उसके अंदर, आप ऐसे क्यों बन गए, आप ऐसे क्यों हो गए, बीमारी से पहले तो आप ऐसे थे, अभी आप ऐसे हो गए, वो आप उस व्यक्ति को और ज्यादा रिजेक्ट कर रहे हैं
2: जी।
3: तो पहली चीज चाहिए कि उस बदलाव, जो बदला हुआ व्यक्ति है, व्यक्ति के लिए कम्प्लीट एक्सेप्टेंस चाहिए। सेकेंड, कम्पैशन। अगर वो बदलाव अच्छे के लिए नहीं है तो वो भी तो हर्ट कर रहा है, वो व्यक्ति भी तो अंदर से दुखी है, चाहे उसको फियर ही है कि बीमारी दोबारा ना आ जाए, चाहे वो बीमारी के बाद बहुत शांत हो गया है, इतना पहले जैसा उमंग में नहीं रहता, तो कंपैशन की वो भी हर्ट कर रहा है
2: जी, बिल्कुल।
3: एंड थर्ड, लव, कि आपका लव उनको एम्पावर कर सके,
2: क्या बात,
3: कि वो वापस अपने जो उनका पुराना वाला जो स्वरूप है, जो आपको लगता था बेटर है, उसमें वापस आ सके। सो एक्सेप्टेंस, कंपैशन एंड देन प्योर सेल्फलेस लव।
2: और नेत्रा जी, जब ये सिस्टर श्रेया ये कह रही थी एक्सेप्टेंस, प्योर लव एंड ऑफ कोर्स प्रोबेबली लॉट ऑफ पेशेंस, तो मुझे एक बहुत कमाल की किताब है ट्यूजडेज विद मॉरी, मिच एल्बम ने लिखी है, तो आपको अगर ये किताब कहीं मिल जाए तो जरूर पढ़िए। तो इसमें ये सारी चीजें लिखी हैं, जब एक बहुत बड़ी बीमारी से कोई गुजर रहा होता है तो ये सारी चीजें ही काम आती हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
5: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
6: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
7: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
8: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
9: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
8: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट।
10: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
11: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
12: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: Inefficient,
14: very complex,
15: clumsy or
16: confusion ही confusion.
17: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ, अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है। ओम शांति, मेरा नाम साक्षी है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो जो गलतियां उसने जीवन में की हैं उनका पछतावा क्यों होता है, और कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि आत्मा अभी कुछ और दिनों तक शरीर के साथ रहनी चाहिए थी?
3: सी, जो हम स्पिरिचुअली समझते हैं, पश्चाताप तो कोई शरीर छोड़ने के बाद ही नहीं होता। पश्चाताप माने हम लाइफ में भी तो कितना पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप क्या होता है कि आपने कुछ किया और बाद में आपको रियलाइज हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
2: लेकिन जीवन के आखिरी दिनों में शायद जब आत्मा शरीर छोड़ने वाली होती है तो उस समय शायद बहुत लोग बोलते हैं कि काश मैंने नहीं किया होता, शायद उनका उस तरफ,
3: क्योंकि साथ में क्या जाता है?
2: कुछ नहीं।
3: मे बी उस समय नहीं, कुछ नहीं क्या, साथ में यही जाता है ना, कर्मों का हिसाब किताब। आपको क्यों पश्चाताप हो रहा होता है? क्योंकि आपने बहुत सारी उन चीजों को इम्पोर्टेंस दी होती है जो चीजें साथ में जाने वाली नहीं होती, और उसके लिए आपने अपने वैल्यूज के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ, एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज किया होता है। सी, कर्म इज नॉट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, ऐसा नहीं है। कॉज एंड इफेक्ट है। आप समझे ना, एक लॉ है, जैसे ग्रेविटी का लॉ होता है, आपने कुछ ऊपर फेंका तो वो नीचे आता है। तो कर्म का भी लॉ क्या कहता है? कॉज एंड इफेक्ट। जो आपने किया है उसका एक इफेक्ट है। अब हमने करते समय तो कई बार हम जस्टिफाई कर देते हैं, ये करना जरूरी था, झूठ बोलना जरूरी था, गुस्सा करना जरूरी था, उस समय पर कर दिया। अब जब उसका इफेक्ट आ रहा है, इफेक्ट मेंटल सफरिंग भी तो एक इफेक्ट होता है ना। आप पश्चाताप कर रहे हैं, गिल्ट कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं सब कुछ जीवन में ठीक है, पता नहीं फिर भी क्यों इतनी उदासी है, खुशी क्यों नहीं अनुभव होती है। मेंटल सफरिंग बहुत बड़ा एक कार्मिक रिटर्न है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी आपको अच्छा ही नहीं लगता, आपको जीवन जीने की दिल ही नहीं होती, तो फिर उस समय कई बार पश्चाताप होता है। लेकिन पश्चाताप की जगह रियलाइजेशन ज्यादा अच्छी है। रियलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर आपने रियलाइज किया कि ये ठीक नहीं था, आगे नहीं करें, बस और क्या।
2: इसमें आप आगे नहीं करें बोलना चाहती हैं, क्योंकि she is talking about somebody who's, or she is talking about herself.
3: Yeah, अगर आपने,
2: she is about to pass on.
3: अगर before also, see what is soul going to take, अगर आपने उस चीज को realize भी किया ना, तो वो स्मृति भी आपके साथ जाती है।
2: अरे वाह, क्या बात। आप, जब आपने रियलाइज किया तभी
3: सोल अपने साथ संस्कार और हिसाब किताब लेकर जाएगी। तो अगर आपने उस चीज को रियलाइज भी किया तो आपके संस्कार में वो चीज चली जाती है कि ये गलत है। तो इवन अगर आपका कॉस्ट्यूम चेंज होगा तो वो स्मृति आपको एक बार जरूर हिट करेगी कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देन अगेन इट इज अ डिसीजन कि करना है कि नहीं करना, फिर उससे एक नया कॉन्सिक्वेंस क्रिएट होगा, लेकिन आपके पास एक चॉइस जरूर होगी।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
3: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
2: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
4: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हो और कोलकाता का फ्लेवर ना हो, ऐसा कैसे?
7: मैत्री ब्रिंग्स यू थक, पूजा, आरती, भोग, सिंदूर खेला, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड अ डिलीशियस डिनर, प्लस लाइव म्यूजिक बाय महालक्ष्मी अय्यर, अंकिता भट्टाचार्य एंड शुभदीप दास चौधरी।
8: अक्टूबर 24th एंड 25th, हमरखोल्ड अपर एलिमेंट्री स्कूल, ईस्ट ब्रंसविक, न्यू जर्सी। रजिस्टर टुडे एट maitriusa.org।
9: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
10: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
11: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
10: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन।
12: इस साल बच्चे की पार्टी बनाइए अनफॉरगेटेबल। कम गेट योर क्राफ्टी हैंड्स ऑन एट आवर क्रिएटिव स्टूडियो इन मार्लबोरो। 26 प्लस DIY प्रोजेक्ट्स, स्लाइम से लेकर क्राफ्ट्स तक, डिजाइन फॉर एवरी चाइल्ड्स एज एंड थीम, साथ में पिज्जा, पॉपकॉर्न और अनलिमिटेड फन। विजिट द craftyhands.com और कॉल 732-397-0057।
13: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है, लिखते हैं कि नमस्ते सिस्टर श्रेया, मैंने हाल ही में आपको सुनना शुरू किया है और आपकी बातें मुझे सच में बहुत इंस्पायरिंग लगती हैं। मैं अपने पास्ट को लेकर स्ट्रगल कर रही हूं। जिस इंसान पर मैंने 4 साल ट्रस्ट किया, उसने बिना किसी एक्सप्लेनेशन के रिलेशनशिप खत्म करके मुझे घोस्ट कर दिया। 4 महीने हो गए हैं, मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश भी की लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। मुझे पता है कि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती, फिर भी एक सवाल बार बार मुझे डिस्टर्ब करता है कि कोई बिना कुछ कहे सब कुछ कैसे छोड़ सकता है। जब सामने से क्लोजर ना मिले तो खुद को कैसे हील करें और कैसे मूव ऑन करें?
3: उसको एक खूबसूरत मोड समझ करके भूल जाए। See, the time that you have spent with that person was very good. Closure बाहर से नहीं मिलता, closure खुद को देना पड़ता है। ठीक है, आपके साथ कुछ ठीक नहीं हुआ, आप चाहेंगे ये चीज का आंसर आपको मिले कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, लेकिन हम चाह रहे हैं पर वो नहीं बात करना चाह रहे या वो नहीं इस चीज को आंसर कर रहे हैं, तो कितना उसके अंदर और इन्वेस्ट करेंगे, कितना और अंदर ही अंदर अपने साथ नेगेटिव कॉन्वर्सेशन करेंगे। फिर कभी कभी हमारा अपने से फेथ भी खत्म होना शुरू हो जाता है
2: कि मुझे में कुछ कमी होगी।
3: हाँ, मुझ में कोई कमी होगी, मेरे में कोई प्रॉब्लम होगी। देन वी कीप इमेजिनिंग थिंग्स, वी कीप अज्यूमिंग थिंग्स, वी कीप, और वो हमें वीक करता है ना। हमने कोई रिलेशनशिप में अपना 100% दिया, इंजॉय किया, बहुत कुछ उससे सीखा, ट्राई भी किया उसको वर्कआउट करने के लिए। आई विल नेवर से कि छोड़ दे। अगर किसी भी रिश्ते के अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ट्राई करना चाहिए वो जब तक बन सके, क्योंकि रिश्ता क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है। दो जने होते हैं, डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट अगर होते हैं तो संस्कारों की थोड़ी रास करनी पड़ती है। कभी किसी को झुकना पड़ता है, कभी किसी को थोड़ा सहन करना पड़ता है, कभी किसी को लेट गो करना पड़ता है, तो ही वो रिश्ता आगे बढ़ता है। हर समय आप समझे मैं ही राइट हूँ तो भी वो रिश्ता नहीं बनता है। तो रिश्ते के अंदर एक एफर्ट होता है, आप इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर आपने सब कुछ कर लिया और वो व्यक्ति क्लियरली कहता है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहता, देन आई डोंट थिंक इट इज फेयर ऑन यू। क्या वो चीज को सोच करके दुख में जाएं, उसका जख्म क्रिएट करें, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाएं? इट इज हार्मिंग यू, आपकी बॉडी, आपकी सोल, आपका वर्क, आपका एनवायरमेंट। इसलिए लेट गो, क्लोजर अपने को दे। बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था, शायद अब शायद इससे भी कोई और अच्छा मिलेगा। मे बी आई डिजर्व समबडी बेटर। वैसे भी अगर कोई ऐसे आपको बिल्कुल छोड़ करके चला गया,
2: उसके भरोसे
3: आप रियलाइज भी कर रहे हैं कि आप उसके साथ जीवन भर तो बिता नहीं सकते हैं, सो देन गिव दैट क्लोजर टू योर सेल्फ। अच्छा ही हो गया, किसी परमानेंट रिलेशनशिप में जाते, मैरिज आदि होती, इससे पहले मुझे इस व्यक्ति के बारे में पता चल गया। ग्रेटिट्यूड फील करे। किसी व्यक्ति की अगर कोई नेगेटिविटी पहले सामने आ जाती है और आप बच जाते हैं, तो ये भी जैसे आपका कोई अच्छा पुण्य कर्म है।
2: आई थिंक उन्होंने क्लोजर ले लिया जब उन्होंने बोला कि मुझे पता है कि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। क्लोजर आपको
3: नहीं, क्लोजर तब तक नहीं मिलता है जब तक हम उस दर्द से बाहर नहीं आते
2: या सामने वाला मुझे जवाब नहीं दे,
3: जो भी कारण है। लेकिन दर्द तो हम क्रिएट कर रहे हैं ना, अभी वो जो भी जवाब देंगे, लेकिन दर्द तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने उसको पकड़ा हुआ है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं होल्ड ऑन कर रहा हूँ, आई एम नॉट लेटिंग गो। क्लोजर उस दिन होगा व्हेन आई से आई लेट गो, दे वर ब्यूटीफुल 4 इयर्स
2: एंड आई मूव ऑन।
3: बहुत सुंदर थे, फिर ये सीन हुई, बहुत अच्छी नहीं थी, बट नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। शायद इससे अच्छा कोई सीन लाइफ में आना बाकी है, इससे अच्छा व्यक्ति आना बाकी है, और अब वो चीज अंदर पेन क्रिएट नहीं कर रही है, वो अंदर दुख नहीं दे रही है। यू आर कंफर्टेबल, आपने एक्सेप्ट कर लिया है, दैट इज क्लोजर। आप दर्द में है तब तक वो क्लोजर नहीं है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: इतना पसंद था ये गाना, इनफैक्ट अभी भी है, बट मेरे दो भाई यशराज मुखाटे एंड केतन सिंह हैव रूइंड इट फॉर मी नाउ। दैट वाज बेशरम रंग, इस हफ्ते गाना नंबर 7 पर। पठान के इस गाने ने पागलपन मचाया। It stayed on number one for so many weeks. लेकिन अब नई फिल्मों के आते खिसक रहा है थोड़ा थोड़ा। This week it's on number 7 from number 4 last week. And my name is Suren and this is the Mirchi Top 20. And ये जो दो दोस्त हैं मेरे, केतन जो खुद एक रेडियो जॉकी रह चुका है एंड यशराज मुखाटे, इन दोनों ने दिमाग में अब ये नया वर्जन डाल दिया है। इफ यू रिमेम्बर, मैंने बताया था कि बेशरम रंग की जो लिखावट है वो थोड़ी ओल्ड स्कूल है। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, एंड दीस टू डिसाइडेड दैट ये एक 60 के दशक का वर्जन बनाएंगे। एंड अगर रफी साहब इस गाने को गाते तो शायद ये कुछ ऐसा सुनाई देता।
1: नहीं।

I hate it so much that I actually love it. मतलब हंसी भी आ रही है और नाज भी है इन दोनों भाइयों पर. खैर आगे बढ़ना है और गाना नंबर 6 हमारा इंतजार कर रहा है. It's a brand new song. It's from Mr. Punjabi, अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म सेल्फी. गाने का नाम है कुड़िये नी तेरी. It's making its debut here on number 6 on the Mirchi Top 20 with me Suren. Number 6.

0: सुरेन के साथ only on Mirchi. It's hot. Mirchi. इसका बना उसका बना सबका बना बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा
1: Mirchi मुर्गा. हेलो
2: दे देना यार मेरे पैसे 10,000 रुपए तूने बहुत
3: यार ऐसे कैसे दे दूं मैं. अरे तो मैंने
1: हेलो हेलो भाई साहब.
3: भाई साहब आप एक सेकंड होल्ड करो ना, मैं आपसे बात करूंगा. कितने कह रहा है?
2: 5 दे दे भाई.
3: 5 पक्की बात है? 5 लौटाएगा?
2: मैं 5 लौटाऊंगा.
3: भाई साहब इसने क्या कही है अभी?
1: 5,000 लौटाऊंगा.
3: 5,000 लौटाऊंगा ठीक है, पक्की बात है?
2: पक्की बात है, पक्की बात है.
3: देखो मुझसे गोली मत दियो, फोन मत कर, पहले बता रहा हूँ.
2: नहीं नहीं करूंगा.
1: अरे मुझे क्या फोन किया?
3: अरे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड को. देख 5,000 पूरे दे रहा हूँ मैं, कब तक दे देगा?
2: 20 दिन बाद ले लियो. चल
3: भाई साहब कितने दिन कह रहा है?
1: 20 दिन बोल रहा है.
3: 20 दिन कह रहा है ना तू?
2: 20 दिन बाद.
3: 20 दिन कह रहा है.
1: अरे तो मैं क्या करूँ
3: भाई साहब? जरूरी तो आपसे बात करनी है, ये तो बीच में आ गया. एक सेकंड होल्ड करो. ये ले, ये 10 के हैं, 500 गिन ले एक बार. गिन
2: ठीक है? ठीक है. 10 नोट दिए
3: भाई साहब. कितने नोट दिए इसे?
1: 10
3: नोट दिए. फोन मत नहीं करेगा तू?
2: फोन मत नहीं करूंगा.
3: पक्की बात है ना?
2: 20 में पक्का वापस ले.
3: फोन मत करियो
2: यार, नीयत थोड़ी खराब है मेरी.
3: अब तो तू कर भी नहीं सकता, सुन ले, क्योंकि ये जो भाई साहब हैं ये गवाह हैं.
2: हाँ तो वो तो है ही
3: भाई साहब. आप गवाह हो ना? आप गवाह हो?
2: मेरी नीयत में कोई
1: गवाह
3: नहीं. नहीं बात सुनो, अगर तूने पैसे ना दिए ये भाई से ले लूंगा मैं, जो फोन पे ये गवाह है.
1: खुद कह रहे हैं. हेलो.
3: हाँ फोन बंद कर दिया उसने. पैसे निकालो अब तुम.
1: अरे मैं क्यों निकालू? जान ना अच्छा, पहचान पैसे तुम मेरे से मांग रहे हो.
3: तुमने कहा नहीं क्या?
1: अरे तुम
3: भाई साहब गवाह बने हो, गवाह. तुमने खुद कहा 10 नोट दिए.
1: खा के थोड़ी दिए.
3: ओ हेलो 5,000 पूरे निकलवा लूंगा, बता रहा हूँ मैं.
1: अरे मैं कहाँ से निकालू? तूने मेरे को पैसे दिए क्या?
3: जबरदस्ती मत करियो, गवाह क्यों बना था? तूने कहा 10 नोट दिए.
1: हाँ तो मैंने तो बताया था, तुम मेरे सामने गिनती कर रहे हो, मैं तो बताऊंगा ना.
3: उसका तो फोन बन जा रहा, तू देगा बता रहा हूँ.
1: हेलो.
2: अरे भैया
1: कौन?
2: अरे वो पैसे लिए थे मैंने उससे. अरे वो पैसे मांगे ना, देना मत तुम उसको बिल्कुल भी.
1: पैसे मैं क्यों दूंगा? तुम दोगे? तुमने लिए?
2: नहीं नहीं गवाह तो आप है ना, देने तो आपके बनते हैं. वैसे तो
1: मैं दूंगा भी नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं बनता देने का.
2: सारी बात ठीक है, पर गवाह क्यों बने बीच में आप?
1: पागल वागल हो क्या? हेलो.
3: पैसे तू देगा ये बता रहा हूँ मैं, तू गवाह बना था.
1: अबे जो उसने फोन ऑन कर लिया उससे बात करना है यार, तुम मेरे को क्यों बार बार फोन कर रहे हैं? मैंने तेरे थोड़ी पैसे लिए तेरे.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: नवरात एकत स्पिरिट
7: गायत्री चेतना सेंटर कम्युनिटी ने साथ ही लावी रहा छे पिस्का टवे मा
6: रमो गरबा डेली 11-19 अक्टूबर सांची 7 कलाक थी.
7: तारीख 18 ना रोज 8 यज्ञ 19 9 यज्ञ 25 शरद पूर्णिमा गरबा ने मिस ना करता तो फैमिली साथे जोड़ाओ अने अनुभव डिविनिटी. विजिट gayatricenter.org टुडे.
8: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
10: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
10: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इज़िलिन.
11: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
12: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
13: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
14: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
15: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
14: Wait, they can see us on Sunday?
15: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
16: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
17: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
16: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.

0: ताज्जुब नहीं होगा अगर ये गाना नंबर वन तक जाए, बिकॉज ऑल्सो इट इज माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ द चार्ट्स, तेरे प्यार में बाय अरिजीत सिंह फ्रॉम तू झूठी मैं मक्कार। बॉयज एंड गर्ल्स, फॉर दोस जिनको फिल्मों का ज्यादा आइडिया नहीं है, तो ये फिल्म तू झूठी मैं मक्कार डायरेक्ट की है मिस्टर लव रंजन ने। एंड लव ने जो चार फिल्म में इससे पहले डायरेक्ट की हैं, ऑल ऑफ देम फीचर्ड हिज फेवरेट पेयर कार्तिक आर्यन एंड नुसरत भरूचा। अब कार्तिक तो नेक्स्ट लेवल स्टार बन गया है एंड सो इज नुसरत। सो लव ऑल्सो डिसाइडेड कि अब यार मैं बड़ी फिल्म बनाऊंगा एंड तब तू झूठी मैं मक्कार हैपेंड। मिर्ची टॉप 20 पे आई एम सुरेन एंड द वन थिंग दैट इज रियली अमेजिंग इज द न्यू पेयरिंग ऑफ द टू कपूर्स रणबीर एंड श्रद्धा। दोनों फिल्म फैमिली से हैं, दोनों फैमिली फ्रेंड्स, दोनों के डैडीज अच्छे दोस्त, बट अब तक दोनों ने साथ में काम नहीं किया था एंड द बेस्ट पार्ट they both actually look good together. But dono ko ek dusre ke sath film karna kya raas aaya jaan lete hain.
1: Everybody knows that you know Ranbir is such a fabulous actor and I've always admired his work and ye experience karne ke liye on set with him bahut maza aaya and he's really superb.
2: So I've known Shraddha since I guess she was born and I was born because our parents are friendly and so we've been friends for a long time. But working with her, I really realized that, you know, we share similar creative energies. I think she comes with the same kind of passion, dedication and fire, you know, to give her best. I think it is Love's genius that she casted both of us together. So thank you, Love.
3: Thank you.
2: I give you credit for this also.
0: I really like their chemistry and I hope it does work some magic. And kya hai ki Pritam Da ne jo gana banaya hai, uska zone, uski vibe ek aur gaane se kaafi milti julti hai. But usse pehle आपको बता दूं इस हफ्ते का गाना नंबर 3 कौन सा है।
4: तुम्हें जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान उस पे मर मिट जाए।
0: अब मैं क्या कह रहा था कि ये जो गाना है तेरे प्यार में, इट डज साउंड लाइक अनदर सॉन्ग दैट आई रियली लव। जो फीलिंग जो वाइब थी लव आजकल 2 के गाने में, आई फाउंड इट हियर एज वेल एंड दैट इज व्हाई मेरे इस हफ्ते का पिक ऑफ द वीक है हां मैं गलत वंस अगेन बाय अरिजीत सिंह एंड प्रीतम दा ऑन द मिर्ची डॉट 20 विद मी सुरेन।

0: इस गाने का ओरिजिनल 12 साल पहले ही तो आया था, इतनी जल्दी इतना पुराना थोड़ी ना हो सकता है कि इसका नया वर्जन निकालना पड़ जाए। प्रीतम दा को खुद ही के गाने रिहैश करने पड़ रहे हैं। मे बी ये मार्केट की डिमांड है, बट I don't think प्रीतम दा खुद ये करना चाहते होंगे। मिर्ची टॉप 20 पे इट्स मी सुरेन एंड कैरेक्टर ढीला है 2.0 इज द ब्रांड न्यू एंट्री ऑन द चार्ट्स एंड ये सीधा आया है नंबर 2 पर एंड दैट इज अनबिलीवेबल। और इस गाने की पॉपुलैरिटी के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है कार्तिक आर्यन की खुद की पॉपुलैरिटी, क्योंकि आजकल कार्तिक जो भी करता है वो सोना बन जाता है एंड प्रीतम दा हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन मेनी हिट सॉन्ग्स इन कार्तिक्स 10-year-old करियर। और ये बात कार्तिक खुद एक्नॉलेज करता है।
1: प्रीतम दा का जो म्यूजिक हमेशा रहा है बीट एनी फिल्म ऑफ माइन, पिछले जो भूल भुलैया 2 आई थी या फ्रेडी भी आई थी, उन दोनों के भी गाने काफी चले थे, फ्रॉम द टाइटल ट्रैक टू काला जादू लास्ट ईयर, दिस ईयर ऑल्सो अभी ये एक एक करके गाने और खुलने वाले हैं। इसमें मुंडा सोना हूँ अभी काफी चल रहा है एंड रिसेंटली मेरे सवाल का जो रोमांटिक ट्रैक है, अगेन इट्स ऑन मतलब मैं ट्रेंडिंग लिस्ट बेसिकली, सो दीज आर ऑल वर्किंग एंड सो आई हैव बीन रियली लकी विद म्यूजिक एंड म्यूजिक काफी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एस्पेक्ट होता है एक एक्टर के करियर को, एक अलग सा उसको एक हीरोइज्म दर्शाने में या फिर उसको एक उस लेवल पे पहुंचाने के लिए। सो आई हैव बीन बीट सोनू टीटू का म्यूजिक, बीट भूल भुलैया का म्यूजिक और बीट एनी अदर फिल्म ऑफ माइंड, ये म्यूजिक हैज ऑलवेज बीन लुका छुपी। तो आई थिंक ये फिल्म में भी वही हो रहा है शहजादा में एंड थिएटर्स में खींचती है ऑडियंस को, ये तो वो बहुत जरूरी है।
0: भाई को तो प्रीतम दा का साथ भी मिल गया है, विच मीन्स ये एक सुपरस्टार होने का सबसे बड़ा सबूत है। रणबीर से पूछ के देखो, वो भी यही बताएगा। ऑलराइट, सो नाउ द नंबर 1 सॉन्ग मिर्ची टॉप 20 पे वी हैव अ न्यू किंग। जिस गाने ने पिछले हफ्ते डेब्यू किया नंबर 3 पे, इस हफ्ते आ गया है सीधा नंबर 1 पे, राइडिंग द नॉस्टैल्जिया एक्सप्रेस, तनिष्क बागची की एक और उपज, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फ्रॉम अक्षय कुमार एंड इमरान हाशमीज अपकमिंग फिल्म सेल्फी। सो बेसिकली दो गाने ऑन द टॉप 2 पोजीशंस जो है पुराने गाने। टॉक्स अबाउट योर टेस्ट मोर देन माइन, चेक इट आउट, यू आर ऑन द मिर्ची टॉप 20, आई एम सुरेन।
2: नंबर 1।

0: आपको क्या लगा हम भूल गए?
1: इंटरेस्टिंगली उदित जी ने अपने हिस्से तो फिर गाए हैं बट अभिजीत दा के पुराने हिस्से रिटेन किए गए हैं। मे बी ना कर दी उन्होंने, मे बी डिडंट केयर। इस हफ्ते का नंबर वन गाना मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, लेकिन इस शो मिर्ची डॉट 20 का खिलाड़ी अब आपको कहता है बाय बाय। आई बी बैक सेम प्लेस सेम चैनल सेम टाइम। मेरे डीएम्स में स्लाइड करने के लिए सुरेन सुरेन ऑफिशियल इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सुरेन ओवर एंड आउट।
2: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: झुमका
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzlin।
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
7: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
8: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
9: Buying a home? Our rate saver will beat your locked rate.
8: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding. Service jis par sab kare bharosa.
10: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
11: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
12: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
12: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
11: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
13: FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La vieja la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello.
4: Yeah, is that Vishal?
3: जी
4: विशाल, I'm Murthy, I'm calling from private limited.
3: जी सर,
4: आपका फर्स्ट राउंड तो हो गया था, आप उस दिन 4 बजे तक रुके थे ऑफिस, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं मिल पाया था आपसे.
3: यस सर.
4: बाय द वे विशाल, आप नेक्स्ट मंथ तो ज्वाइन करने में कंफर्टेबल है ना?
3: बिल्कुल बिल्कुल सर.
4: अक्टूबर मिड में अगर मैं बोलूं तो.
3: जी.
4: अच्छा विशाल, मैं आपसे सिंपल ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड आपका हुआ उन्होंने काफी इम्प्रेस थे आपसे, बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इफ यू हायर यू, आप 5 साल के बाद, मान के चलिए आपने आज ज्वाइन कर ली कंपनी, 5 साल के बाद आप कहाँ देखते हैं अपने आप को?
3: सर मैं 5 साल बाद इतनी मतलब कड़ी मेहनत करूंगा आपकी कंपनी में कि मैं आगे जाके खुद ही कंपनी खड़ी कर सकूं.
4: आर वी फूल, आप यहाँ पे आए और आप ऐसे सोचिए ना, आप किसी को हायर कर रहे हैं और आप उस पे मेहनत कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, और आप उससे पूछे 5 साल के बाद क्या करोगे, और वो कहे कि 5 साल के बाद तुम्हें छोड़ के अपनी कंपनी खड़ी कर लूंगा ताकि तुम्हारा नुकसान हो.
3: नहीं सर. सर मैं आपके साथ, सर मैं 10 साल तक काम करूंगा आपके साथ, जी जान लगा दूंगा सर, और 10 साल तक आप ही के साथ काम करूंगा सर मैं.
4: अगेन अभी फूल, मतलब 10 साल तक आपकी ग्रोथ ही नहीं कर रहे, आप पड़े में. नहीं, आप खुद सोचिए, आपने कंपनी खड़ी करी, आपने एक को हायर किया, आपने उम्मीदें करी कि ये बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट एम्प्लॉय है, आपको लगता है ये सही विजन है?
3: सर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ सर.
4: मेरे साथ काम करना चाहते हैं?
3: जी सर, आपकी कंपनी में तरक्की करना चाहता हूँ, जितनी ग्रोथ है आपकी कंपनी में, कहीं नहीं जाऊंगा सर आपको छोड़ के.
4: बिल्कुल पक्का?
3: बिल्कुल सर, पक्की बात है.
4: देख लीजिए
3: जी,
4: 5 साल के बाद की बात कर रहा हूँ मैं.
3: हाँ सर बिल्कुल, जितनी ग्रोथ होगी सर आपकी कंपनी में होगी, आपकी कंपनी में जी जान लगा के कड़ी शिद्दत से मेहनत से दिल से कंपनी की हम ग्रोथ में अपना योगदान,
4: कंपनी की ग्रोथ में आप अपना योगदान देंगे.
3: जी सर.
4: ठीक है, यू आर हायर्ड. विशाल भाई, आप जो आपका नंबर दिया था, पर यार विशाल तुम कितने प्यारे हो यार, तुम कितने मासूम हो. सो नाउ वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 इयर्स, टेल मी नाउ.
3: सर मैं फाड़ दूंगा सर, 5 साल बाद अपनी कंपनी बनाऊंगा मैं.
4: यस.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
8: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
7: Wait, they can see us on Sunday?
8: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
7: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आर के ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आर के ज्वेल्स. आर के ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
9: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
10: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
10: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: Listener mein back to back gana sunega. Back to back gana sunega.
0: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
3: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
5: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे.
6: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा.
7: अरे मुझे कोई ट्रैक करे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा.
8: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है. Zoho One इज एन ऑल इन वन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सुइट, जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं. यस, योर एंटायर बिजनेस. Zoho One इज इजी टू यूज, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है. काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. गेट योर फ्री ट्रायल एट zoho.com/one.
9: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
10: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी.
11: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है. फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
12: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
11: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
13: एक ही होता है.
11: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @mirchijituraj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतू राज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलन।
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: મેં ઘણા બધા લોકોને વાત કહેતા સાંભળ્યા છે કે ભાઈ એક વખત પડી જવાનું, ધંધો હોય રિલેશનશિપ હોય, એ તો તમે પડો ને તો તમને તરતા આવડે, પડો ને તો તરતા આવડી જ જાય, આમ તેમ હાથ પગ મારો ને તો બધું સેટ થઈ જ જાય, પછી જો કંઈ ગરબડ થાય તો એ તો જોયું જાય, પછી એમાંથી કેવી રીતે બહાર નીકળવું એ તો બધું સાચવ્યું જાય, થઈ જાય બધું. પણ મારા પ્રમાણે એવું જરા પણ ના હોય. મહાભારતમાંથી હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું, બહુ જ રેલેવન્ટ એક્ઝામ્પલ આપું. અભિમન્યુને ચક્રવ્યૂહમાં એન્ટ્રી કેવી રીતે લેવી એ ખબર હતી, એની પાસે જ્ઞાન હતું કે ચક્રવ્યૂહમાં એન્ટ્રી કેવી રીતે લેવી, પણ એ જ્ઞાન જરા પણ નહોતું કે ચક્રવ્યૂહમાંથી બહાર કેવી રીતે નીકળવું. જો બંને નોલેજ હોત કે પડવું કેવી રીતે, લડવું કેવી રીતે અને પછી સેફલી બહાર કેવી રીતે નીકળવું, તો અભિમન્યુની હત્યા, અભિમન્યુનું વધ પોસિબલ નહોતું. અભિમન્યુ ખાલી 16 વર્ષનો હતો કે જ્યારે એણે કૌરવોની આટલી મોટી સેનાના સામે આટલી પુરજોર રીતે લડત આપી હતી. 5-5 યોદ્ધા લાગ્યા હતા અભિમન્યુની હત્યા કરવા માટે, અને એ પણ વોરના કોડના ખિલાફ. જો ખાલી એટલું જ નોલેજ પ્રાપ્ત કર્યું હોત કે આમાંથી બહાર કેવી રીતે નીકળવું, તો આખી ઘટના શક્ય ના બની હોત. એટલા જ માટે હું કહી રહ્યો છું કે કોઈ પણ વસ્તુમાં પડતા પહેલા, કોઈ પણ ચક્રવ્યૂહમાં પડતા પહેલા એનું પૂરેપૂરું જ્ઞાન મેળવી લેવું, પૂરેપૂરી સમજ લઈ લેવી, પૂરેપૂરી રિસર્ચ કરી લેવી, એના પછી જ એમાં પડવું. નહીં તો જીવનના કોઈ પણ ચક્રવ્યૂહમાંથી તમે બહાર નહીં આવી શકો, કારણ કે તમે તો અભિમન્યુ પણ નથી, અંદર લડત પણ નહીં આપી શકો. યુ આર લિસનિંગ ટુ મિર્ચી, હું છું તમારો કૃતાર્થ.
1: हेलो,
2: दे देना यार मेरे पैसे, 10,000 रुपए तूने बहुत टाइम.
3: यार ऐसे कैसे दे दूं मैं? अरे तो मैंने
1: हेलो हेलो भाई साहब,
3: भाई साहब आप एक सेकंड होल्ड करो ना, मैं आपसे बात करूंगा. कितने कह रहा है?
2: 5 दे दे भाई.
3: 5 पक्की बात है? 5 लौट आएगा?
2: मैं 5 लौटाऊंगा
3: भाई साहब. इसने क्या कही है अभी?
1: 5,000 लौटाऊंगा.
3: 5,000 लौटाऊंगा, ठीक है, पक्की बात है?
2: पक्की बात है, पक्की बात है.
3: देखो मुझसे गोली मत दियो, फोन मत मत कर, पहले बता रहा हूँ.
2: नहीं नहीं करूंगा.
1: अरे मुझे क्या फोन किया?
3: अरे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड को देख. 5,000 पूरे दे रहा हूँ मैं, कब तक दे देगा?
2: 20 दिन बाद ले लियो. चल
3: भाई साहब, कितने दिन कह रहा है?
1: 20 दिन बोल रहा है.
3: 20 दिन कह रहा है ना तू?
2: 20 दिन
3: 20 दिन कह रहा है.
1: अरे तो मैं क्या करूँ
3: भाई साहब? जरूरी तो आपसे बात करनी है, ये तो बीच में आ गया. एक सेकंड होल्ड करो. ये ले, ये 10-10 के हैं, 500 गिन ले एक बार, गिन.
2: ठीक है,
3: ठीक है,
2: 10 नोट दिए
3: भाई साहब. कितने नोट दिए इसे?
1: 10 नोट.
3: 10 नोट दिए. फोन मत नहीं करेगा तू?
2: फोन मत नहीं करूंगा यार,
3: पक्की बात है ना?
2: 20 दिन पक्का वापस ले.
3: फोन मत मत करियो
2: यार, नीयत थोड़ी खराब है मेरी यार.
3: तो तू कर भी नहीं सकता, सुन ले, क्योंकि ये जो भाई साहब है ये गवाह है.
2: हाँ तो वो तो है ही
3: भाई साहब. आप गवाह हो ना? आप गवाह हो?
2: मेरी नीयत में
1: कोई गवाह
3: नहीं. नहीं बात सुनो, अगर तूने पैसे ना दिए, ये भाई से ले लूंगा मैं जो फोन पे है, ये गवाह है,
1: खुद कह रहे हैं. हेलो.
3: हाँ, फोन बंद कर दिया उसने. पैसे निकालो अब तुम.
1: अरे मैं क्यों निकालू? जान ना अच्छा, पहचान पैसे तुम मेरे से मांग रहे हो?
3: तुमने कहा नहीं क्या?
1: अरे तुम
3: भाई साहब गवाह बने हो, गवाह. तुमने खुद कहा 10 नोट दिए.
1: खाके थोड़ी दी है.
3: ओ हेलो, 5,000 पूरे निकलवा लूंगा, बता रहा हूँ मैं.
1: अरे मैं कहाँ से निकालू? तूने मेरे को पैसे दिए?
3: जबरदस्ती मत करियो, गवाह क्यों बना था? तूने कहा 10 नोट दिए.
1: हाँ तो मैंने तो बताया था, तुम मेरे सामने गिनती कर रहे हो, मैं तो बताऊंगा ना.
3: उसका तो फोन बन जा रहा, तू देगा बता रहा हूँ.
1: हेलो.
2: अरे भैया.
1: कौन?
2: अरे वो पैसे लिए थे मैंने उससे. अरे वो पैसे मांगेगा ना, देना मत तुम उसको बिल्कुल भी.
1: पैसे मैं क्यों दूंगा? तुम दोगे? तुमने लिए?
2: नहीं नहीं, गवाह तो आप है ना, देने तो आपके बनते हैं. वैसे तो
1: मैं दूंगा भी नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं बनता देने का.
2: यार सारी बात ठीक है, पर गवाह क्यों बने बीच में आप?
1: पागल वागल हो क्या? हेलो.
3: पैसे तू देगा ये बता रहा हूँ मैं, तू गवाह बना था.
1: अबे जो उसने फोन ऑन कर लिया उससे बात करना है यार, तुम मेरे को क्यों बार बार फोन कर रहा है? मैंने थोड़ी पैसे लिए तेरे.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
8: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
7: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
9: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
10: मेक योर चाइल्ड्स पार्टी अनफॉरगेटेबल दिस ईयर। कम गेट योर क्राफ्टी हैंड्स ऑन एट आवर क्रिएटिव स्टूडियो इन मार्लबोरो। 26 प्लस DIY प्रोजेक्ट्स फ्रॉम स्लाइम टू क्राफ्ट्स, ऑल डिजाइंड अराउंड योर चाइल्ड्स एज एंड थीम, एंड ऑफ कोर्स पिज्जा, पॉपकॉर्न एंड अनलिमिटेड फन। विजिट द craftyhands.com और कॉल 732-397-0057।
11: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
14: छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता मिर्ची सुनना है?
15: मिर्ची सुनना है, मिर्ची सुनना है।
4: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
6: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।
7: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा।
8: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ગુડ મોર્નિંગ, સાંભળી રહ્યા છો મિર્ચી, હું છું કૃતાર્થ. હવે મુદ્દો જરાક એમ છે કે આજથી શ્રાવણ ચાલુ થાય છે કે નથી થતો, એના ઉપર ડિબેટ ચાલી રહી છે. ઘણા બધા એક્સપર્ટ સોશિયલ મીડિયા ઉપર પણ હું સવારથી જોઈ રહ્યો છું કે ઘણા લોકોનું કેવું છે કે આજથી જ ચાલુ થઈ ગયું, ઘણા લોકોનું કેવું છે કે ના ના હજુ તો બહાર છે, 15 દિવસની બહાર છે, 13th ઓગસ્ટથી ચાલુ થશે. હવે આજનો મારો સિલી સવાલ એમ છે કે આ શ્રાવણ મહિનાનો જે તહેવાર છે, હું તો એને તહેવાર જ ગણું છું, એમાં આપણને ચોઇસ મળે છે કે આજથી ચાલુ કરવું હોય તો આજથી કરો, 15 દિવસ પછી કરવું હોય તો 15 દિવસ પછી કરો. પણ દિવાળી, ઉત્તરાયણ, નવરાત્રિ એમાં કોઈ ચોઇસ નથી મળતી, એ તો એક ફિક્સ તારીખે જ ચાલુ થાય નેશન વાઇડ અને ફિક્સ તારીખે જ પૂરો થાય એ તહેવાર. તો એવું કેમ અમુક તહેવારમાં ચોઇસ મળે અને અમુક તહેવારમાં બિલકુલ ચોઇસ ના મળે? આવું શું કામ? વોટ ઇઝ ધ રીઝન? ઓનેસ્ટલી આ સિલી સવાલનો જવાબ મને પણ નથી ખબર. બોલો, આપો મને જવાબ, તમારી પાસે કોઈ આન્સર હોય તો. મારો વોટ્સએપ નંબર છે 8422983983. રિપીટ કરી દઉં, 8422983983.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स. RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
5: इस साल बच्चे की पार्टी बनाइए अनफॉरगेटेबल. कम गेट योर क्राफ्टी हैंड्स ऑन एट आवर क्रिएटिव स्टूडियो इन मार्लबोरो. 26 प्लस DIY प्रोजेक्ट्स, स्लाइम से लेकर क्राफ्ट्स तक, डिजाइन फॉर एवरी चाइल्ड्स एज एंड थीम. साथ में पिज्जा, पॉपकॉर्न और अनलिमिटेड फन. विजिट द craftyhands.com और कॉल 732-397-0057.
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस रूम्स के लिए रॉयल शेरवानी.
6: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 Middlesex Avenue, इजलिन.
8: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
9: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी.
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
10: अब मिर्ची खा.
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स, फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान की फिल्मों को मिलती है। यह अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @MirchiJeeturaj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज, 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
7: अब मिर्ची खा।
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

0: कालिया
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La viva la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello.
4: Yeah, is that Vishal?
3: Ji.
4: Vishal, I'm Murthy. I'm calling from Private Limited.
3: जी सर,
4: आपका फर्स्ट राउंड तो हो गया था, आप उस दिन 4 बजे तक रुके थे ऑफिस, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं मिल पाया था आपसे।
3: यस सर।
4: बाय द वे विशाल, आप नेक्स्ट मंथ तो ज्वाइन करने में कंफर्टेबल है ना?
3: बिल्कुल बिल्कुल सर।
4: अक्टूबर मिड में अगर मैं बोलूं तो।
3: जी।
4: अच्छा विशाल, मैं आपसे सिंपल ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड आपका हुआ उन्होंने काफी इम्प्रेस थे आपसे, बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इफ यू हायर यू, आप 5 साल के बाद, मान के चलिए आपने आज ज्वाइन कर ली कंपनी, 5 साल के बाद आप कहाँ देखते हैं अपने आप को?
3: सर मैं 5 साल बाद इतनी मतलब कड़ी मेहनत करूंगा आपकी कंपनी में कि मैं आगे जाके खुद ही कंपनी खड़ी कर सकूं।
4: आर वी फूल, आप यहाँ पे आए और आप ऐसे सोचिए ना, आप किसी को हायर कर रहे हैं और आप उस पे मेहनत कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, और आप उससे पूछे 5 साल के बाद क्या करोगे, और वो कहे कि 5 साल के बाद तुम्हें छोड़ के अपनी कंपनी खड़ी कर लूंगा ताकि तुम्हारा नुकसान हो।
3: नहीं सर, सर मैं आपके साथ, सर मैं 10 साल तक काम करूंगा आपके साथ, जी जान लगा दूंगा सर, और 10 साल तक आप ही के साथ काम करूंगा सर मैं।
4: अगेन अभी फूल, मतलब 10 साल तक आपके ग्रोथ ही नहीं कर रहे, आप पड़े में नहीं, आप खुद सोचिए, आपने कंपनी खड़ी करी, आपने एक को हायर किया, आपने उम्मीदें करी कि ये बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट एम्प्लॉय है, आपको लगता है ये सही विजन है?
3: सर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ सर,
4: मेरे साथ काम करना चाहते हैं?
3: जी सर, आपकी कंपनी में तरक्की करना चाहता हूँ, जितनी ग्रोथ है आपकी कंपनी में, कहीं नहीं जाऊंगा सर आपको छोड़ के।
4: बिल्कुल पक्का?
3: बिल्कुल सर, पक्की बात है।
4: देख लीजिए
3: जी,
4: 5 साल के बाद की बात कर रहा हूँ मैं।
3: हाँ सर बिल्कुल, जितनी ग्रोथ होगी सर आपकी कंपनी में होगी, आपकी कंपनी में जी जान लगा के कड़ी शिद्दत से मेहनत से दिल से कंपनी की हम ग्रोथ में अपना योगदान,
4: कंपनी की ग्रोथ में आप अपना योगदान देंगे?
3: जी सर।
4: ठीक है, यूर हायर्ड। विशाल भाई, आप जो आपका नंबर दिया था, पर यार विशाल तुम कितने प्यारे हो यार, तुम कितने मासूम हो। सो नाउ वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 इयर्स, टेल मी नाउ।
3: सर मैं फाड़ दूंगा सर, 5 साल बाद अपनी कंपनी बनाऊंगा मैं।
4: यस।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
9: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
8: Wait, they can see us on Sunday?
9: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
8: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आर के ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आर के ज्वेल्स। आर के ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
10: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
11: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
10: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
14: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
13: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
15: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
13: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
11: एक ही होता है।
13: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: है दिल
1: तेरी चाल ढाल हाल बाल सब बवाल सब गजब तेरी चाल ढाल हाल बाल उफ़ो हिप्स लिप्स

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Oh no!
3: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
5: इस बार दशहरा होगी धमाकेदार.
6: वो तो होगी ही, और ताम झाम भी होगी दुगना.
7: यस, ओनली एट इंडो अमेरिकन फेस्टिवल INC, 28th दशहरा फेस्टिवल ऑन सैटरडे 10th अक्टूबर एट लेक पापायानी पार्क, एडिसन, न्यू जर्सी, 1 PM टू 8 PM.
5: जॉइन अस फॉर मार्वेलस रामलीला, स्पेक्टेकुलर रावण दहन, कल्चरल प्रोग्राम्स, मीना बाजार एंड मोर.
1: फॉर डिटेल्स कॉल 732-444-8381 और विजिट dashera.com.
8: The mortgage industry has changed over the years, par hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
9: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
10: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
9: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: Tera kya hoga, Kalia?
14: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
13: Ab mirchi kha.
15: Radio Mirchi, it's hot.

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Listener MA, back to back gana sunega.
5: Back to back gana sunega.
4: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot. Yes.

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vieva la burga.
1: Milci, burga. हेलो,
2: दे देना यार मेरे पैसे, 10,000 रुपए तूने बहुत
3: टाइम। यार ऐसे कैसे दे दूं मैं? अरे तो मैंने
1: हेलो हेलो भाई साहब,
3: भाई साहब आप एक सेकंड होल्ड करो ना, मैं आपसे बात करूंगा। कितने कह रहा है?
2: 5 दे दे भाई।
3: 5 पक्की बात है? 5 लौटाएगा?
2: मैं 5 लौटाऊंगा
3: भाई साहब। इसने क्या कही है अभी?
1: 5,000 लौटाऊंगा।
3: 5,000 लौटाऊंगा, ठीक है? पक्की बात है?
2: पक्की बात है, पक्की बात है।
3: देखो मुझसे गोली मत दियो, फोन मत कर, पहले बता रहा हूँ।
2: नहीं नहीं करूंगा।
1: अरे मुझे क्या फोन किया?
3: अरे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड रुको। देख 5,000 पूरे दे रहा हूँ मैं, कब तक दे देगा?
2: 20 दिन बाद ले लियो। चल
3: भाई साहब, कितने दिन कह रहा है?
1: 20 दिन बोल रहा
3: है। 20 दिन कह रहा है ना तू?
2: 20 दिन
3: कह रहा है।
1: अरे तो मैं क्या करूँ
3: भाई साहब? जरूरी तो आपसे बात करनी है, ये तो बीच में आ गया। एक सेकंड होल्ड करो, ये ले, ये 10-10 के हैं, 500 गिन ले एक बार, गिन।
2: ठीक है,
3: ठीक है,
2: 10 नोट दिए
3: भाई साहब। कितने नोट दिए इसे?
1: 10 नोट दिए।
3: 10 नोट दिए। फोन बंद नहीं करेगा तू?
2: फोन बंद नहीं करूंगा यार,
3: पक्की बात है ना?
2: 20 में पक्का वापस ले।
3: फोन बंद मत करियो
2: यार, नीयत थोड़ी खराब है मेरी यार।
3: तो तू कर भी नहीं सकता, सुन ले, क्योंकि ये जो भाई साहब है ये गवाह है।
2: हाँ तो वो तो है ही
3: भाई साहब, आप गवाह हो ना, आप गवाह हो।
2: मेरी नीयत में
1: कोई गवाह
3: नहीं। नहीं बात सुनो, अगर तूने पैसे ना दिए, ये भाई से ले लूंगा मैं जो फोन पे है, ये गवाह है,
1: खुद कह रहे हैं। हेलो।
3: हाँ फोन बंद कर दिया उसने, पैसे निकालो अब तुम।
1: अरे मैं क्यों निकालू, जान ना अच्छा, पहचान, पैसे तुम मेरे से मांग रहे हो।
3: तुमने कहा नहीं क्या?
1: अरे तुम
3: भाई साहब गवाह बने हो, गवाह। तुमने खुद कहा 10 नोट दिए,
1: खा के थोड़ी दी है।
3: ओ हेलो, 5,000 पूरे निकलवा लूंगा, बता रहा हूँ मैं।
1: अरे मैं कहाँ से निकालू, तूने मेरे को पैसे दिए।
3: अरे जबरदस्ती मत करियो, गवाह क्यों बना था? तूने कहा 10 नोट दिए।
1: हाँ तो मैंने तो बताया था, तुम मेरे सामने गिनती कर रहे हो, मैं तो बताऊंगा ना।
3: उसका तो फोन बन जा रहा, तू देगा बता रहा हूँ।
1: हेलो।
2: अरे भैया
1: कौन?
2: अरे वो पैसे लिए थे मैंने उससे। अरे वो पैसे मांगेगा ना, देना मत तुम उसको बिल्कुल भी।
1: पैसे मैं क्यों दूंगा, तुम दोगे, तुमने लिए?
2: नहीं नहीं, गवाह तो आप है ना, देने तो आपके बनते हैं। वैसे तो
1: मैं दूंगा भी नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं बनता देने का।
2: यार सारी बात ठीक है, पर गवाह क्यों बने बीच में आप?
1: पागल वागल हो क्या? हेलो।
3: पैसे तू देगा ये बता रहा हूँ मैं, तू गवाह बना था।
1: अबे तो उसने फोन ऑन कर लिया, उससे बात करना है यार, तुम मेरे को क्यों बार बार फोन कर रहे हैं? मैंने थोड़ी पैसे लिए तेरे।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
8: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
10: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
10: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
11: Inefficient,
12: very complex,
13: clumsy और
14: confusion ही confusion.
10: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ, अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
15: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
15: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
15: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
16: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
17: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
16: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
18: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
3: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
4: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
6: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
7: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
6: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
7: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: बेटा, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है.
11: अरे माँ, अभी भेजता हूँ. टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में.
10: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट.
12: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे. टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069.
13: तेरा क्या होगा कालिया?
14: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
13: अब मिर्ची खा.
15: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: बेटा, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
4: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
3: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
5: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
9: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
10: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
11: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
12: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
13: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
14: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
13: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
15: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
16: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
15: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
17: Isse apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
15: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
18: एक ही होता है।
15: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Ghana Indie Top 10.
2: Kanika ke saath on Mirchi.
3: Mirchi sun rahe hain aap. Ab bari hai for the hottest pop music. Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show jahan hafte ke top 10 hottest pop gaano ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. Connect with me. Instagram pe mera handle is @RJKanika. Koi gaana suggest karna hai, baatein batani ho, bindaas aake hit me up. Hafte ke top 10 hottest gaano mein ek nayi entry hai. Hamara 90s 2000s ka indie pop classic. A special shout out all this and more. To seedha shuruaat karti hu is hafte ke countdown ki with gaana number 10. Sanju Rathod की आवाज होने की कॉम्पोजिशन बैंगल्स 17 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. बैंगल्स इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद रोमांस इज स्टिल इन द एयर रेखा भारद्वाज जी एंड राघव कौशिक की आवाज में. राघव कौशिक की कॉम्पोजिशन है मुसाफिर कैफे से है ये गाना. गाने का नाम है दरमिया ऑन गाना नंबर 9. दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बद्दी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 10.

0: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: This festive season, Kalal of New Jersey presents two mesmerizing nights.
4: October 17th, the voice behind the famous Billo Rani, Richa Sharma.
3: And October 18th, the voice behind Barish, Ash King. Book individual tickets or packages now at kalal.com. That is KALLOL.com. Or call 917-440-9266.
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
6: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया, अ थाउजेंड ईयर ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ खानदानी शेफ्स रेसिपीज कम्स द नाम. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
7: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
9: Make your child's party unforgettable this year. Come get your crafty hands on at our creative studio in Marlboro. 26 plus DIY projects, from slime to crafts, all designed around your child's age and theme. And of course, pizza, popcorn and unlimited fun. Visit thecraftyhands.com or call 732-397-0057.
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
12: बेटा, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ dialogue ही है.
13: अरे माँ, अभी भेजता हूँ. टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे. टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में.
12: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट.
14: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे. टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069.
15: तेरा क्या होगा कालिया?
16: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
15: अब मिर्ची खा.
17: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।

0: बंजारे दी आर्टिस्ट की आवाज में, एक गाने का नाम है बैरन, उन्हीं की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स 27 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। बैरन वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले साई और भयंकर का गाना राधिमा ने एंट्री मारी ऑन गाना नंबर 7। और गाना नंबर 8 पर था फरक दी आर्टिस्ट का तारे।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This show is all about the hottest pop music of the week. गाना नंबर 6 पर हमने सुना बैरन, जो कि हरियाणवी भाषा में है। कभी कभी गाना आपको लैंग्वेज आने की वजह से नहीं पसंद आता, इट्स जस्ट अबाउट द म्यूजिक। एंड काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है, इट्स एग्जैक्टली दैट काइंड ऑफ अ सॉन्ग। ये गाना दुनिया को एक मलयालम इंडिपेंडेंट सॉन्ग की तरह मिला। पिछले साल नवंबर में रिलीज हुआ था एंड ऑनेस्टली आई डोंट थिंक इस गाने के मेकर्स ने भी सोचा होगा दैट दिस सॉन्ग विल बिकम सच अ बिग हिट। सोशल मीडिया रील से क्रॉस ओवर होके दिस सॉन्ग बिकेम सो बिग दैट इस गाने में ऑफिशियल हिंदी रीमिक्स किया है श्रेया घोषाल ने। इफ यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट कल्याणी का रीमिक्स एंड आई हैव टू एडमिट आई कैन नॉट स्टॉप लिसनिंग टू द सॉन्ग। ओरिजिनल गाना मलयालम में, लेकिन जो लिरिक्स हैं उसमें बेसिकली बात हो रही है एक लड़की की, उसकी स्माइल, डिम्पल्स, उसकी आंखें, इनक्रेडिबल एफ्रो R&B इन्फ्लुएंस्ड प्रोडक्शन एंड अ उबर मॉडर्न ग्रूव। एंड देन श्रेया घोषाल का हुक टेक्स दिस सॉन्ग टू अनदर लेवल। आई थिंक दैट्स द रीजन इस गाने में लैंग्वेज का कोई बैरियर है ही नहीं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द बीट। अब श्रेया घोषाल की आवाज के साथ अर्जुन, KDS, रॉन एंड 54 का गाना कल्याणी is playing right next for you. पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप करके इट्स अ गाना नंबर 5। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
1: नंबर 5।

0: Sana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
4: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
7: इस बार दशहरा होगी धमाकेदार।
8: वो तो होगी ही, और तामझाम भी होगी दुगना।
9: Yes, only at Indo American Festival INC 28th Dasara Festival on Saturday 10th October at Lake Papayani Park, Edison, New Jersey, 1 p.m. to 8 p.m.
7: Join us for marvelous Ram Leela, spectacular Ravan Dahan, cultural programs, Meena Bazaar and more.
10: For details call 732-444-8381 or visit dasara.com.
11: Oh no!
12: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
13: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
14: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
15: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
16: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
15: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
17: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
18: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
19: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
18: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Indie Top 10
20: Kanika ke saath on Mirchi
21: Number 4.

0: कृष्णा एंड धंधा न्योलीवाला का गाना, गाने का नाम है बूम शाका। 3 हफ्तों से काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 1 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। पॉप म्यूजिक इज डेफिनेटली हैविंग इट्स बूम शाका मोमेंट।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, दिस इज गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना शेयर करना है बिंदास आके हिट मी अप। गाना नंबर 5 पर हमने सुना कल्याणी। एक मलयालम गाने में श्रेया घोषाल ने अपना हिंदी रीमिक्स दिया है। द वर्ल्ड ऑफ पॉप म्यूजिक इज सो डाइवर्स दैट ये एक बॉक्स में आ ही नहीं सकता है। आप एक दिन क्लासिकल गा सकते हो, अगले दिन इलेक्ट्रॉनिक पॉप कोलैबोरेशन कर सकते हो, एन R&B सॉन्ग और अ फोक क्लासिकल। एक ही आर्टिस्ट ये हर तरह के म्यूजिक में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एंड वो पॉप म्यूजिक उन्हें स्पेस देता है। एंड जब हम हिंदी फिल्म म्यूजिक की सबसे सेलिब्रेटेड प्लेबैक सिंगर श्रेया घोषाल को इतना एक्सपेरिमेंटल होते देखते हैं इन पॉप म्यूजिक, ये विश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है। श्रेया का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक सर्टेन साउंड आ जाती है, फिल्म, बिग मेलोडीज, ऑर्केस्ट्रेशन, दैट अनमिस्टेकेबल वॉइस। वो वॉइस वही है बट शी हैज बीन एक्सपेरिमेंटिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर विद द सॉन्ग्स। फन फैक्ट, श्रेया घोषाल ने अपना पहला प्लेबैक गाना किया था विच वॉज बेरी पिया इन देवदास। उसको सुन के एवरीबडी वॉज लाइक, हु इज दिस गर्ल, हमने इसको अभी तक कैसे नहीं सुना है। एंड आज 2026 में शी इज रिलीज्ड अ सॉन्ग कॉल्ड बेरी पिया जो कि ओरिजिनल बेरी पिया से बिल्कुल अलग है। श्रेया घोषाल की आवाज वही है लेकिन प्रोडक्शन कंटेम्प्रेरी है। इंडियन क्लासिकल के टचेस हैं, सितार हैं, बट द रिदम इज टू अपबीट एंड वेरी मॉडर्न। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। स्पेशल शाउट आउट टू बेरी पिया, श्रेया घोषाल की आवाज में, अनुराग मिश्रा की कॉम्पोजिशन, आलोक रंजन अनुराग मिश्रा के लिरिक्स। बेरी पिया इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Ghana Indie Top 10.
2: Kanika ke saath on Mirchi.
3: Mirchi sun rahe hain aap. This is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show which is all about the hottest pop music of the week. Gana number 10 se gana number 3 ka safar hum pura kar chuke hain. Before we move on to the top 2 songs of the week, it's time for what we call
1: Kanika's Cassette Classic.
3: हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं. द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज
4: पहला ये पहला प्यार तेरा मेरा सोनी,
3: एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू फीचर दिस वीक इज
4: सोचता हूँ उसका दिल कभी मुझ पे आए.
3: गाने का नाम है सोचता हूँ उसका दिल, बाबुल सुप्रियो की आवाज में. 2003 में ये गाना रिलीज हुआ था. सामी मरूफ की कॉम्पोजिशन, फैज अनवर के लिरिक्स एंड बाबुल सुप्रियो की वो वार्म फजी स्लाइटली ड्रीमी आवाज. इस गाने में एक बहुत ही सिंपल सी फीलिंग है. आप किसी को पसंद करते हो, शायद उसे पता भी नहीं है, एंड आप बस इमेजिन करते रहते हो कि कभी उसका दिल मुझ पर भी आए तो. एंड कुछ तो बात है अक्टूबर के माहौल में, हवा चल रही है, आप कहीं से घर लौट रहे हो, फोन में कोई मैसेज नहीं है, यू आर स्माइलिंग एनीवे बिकॉज दिमाग में वही इंसान है. आई डोंट नो अबाउट यू, अक्टूबर रियली मेक्स मी डिल्यूजनल. वो वार्म फजी फीलिंग आ जाती है, बटरफ्लाईज थोड़ी ज्यादा फील होती है. एंड दिस सॉन्ग बाय बाबुल सुप्रियो इज द परफेक्ट साउंड ट्रैक टू माई अक्टूबर इवनिंग. सो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. थ्रोइंग बैक टू आवर क्लासिक्स, बाबुल सुप्रियो की आवाज में दिस इज सोचता हूँ उसका दिल ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. यू आर लिस्टिंग टू गाना इन टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

कुछ तो बात है यार हवा में, पता नहीं क्यों ये पुराने गाने अचानक ज्यादा अच्छे लगने लग गए बाबुल सुप्रियो की आवाज में। दैट वाज सोचता हूँ उसका दिल ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक एट आरजे कनक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ। 90s 2000s का वो गाना जो आज भी आपको लगता है कि दिस इज द सॉन्ग मैन, हमसे आके शेयर करो। मैं और आशिका है माई साउंड प्रोड्यूसर, हम आपके रिकमेंडेशंस को बहुत सीरियसली कंसिडर करते हैं। वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, इट्स टाइम फॉर द टॉप टू सॉन्ग्स ऑफ द वीक। मिट्टा अरोर की आवाज होने की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है शीशा। इस काउंटडाउन का सबसे सीनियर सिटीजन 27 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार शीशा ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद बाटरा की कॉम्पोजिशन है हितेन का म्यूजिक, शर्वी यादव बाटरा का गाना, गाने का नाम है बैंगर। पिछले हफ्ते से एक पोजिशन ऊपर जंप करके बैंगर at the top. Dono gaane back to back only on Gaana Indie Top 10. Pandi ka naam hai Kanika. Enjoy.

Brand. Barrel. Yeah. भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने वैसे इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओ टू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @mirchijituraj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतू राज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
7: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
7: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन।
8: Nine Nights, One Divine Spirit.
9: Gayatri Chetna Center brings the community together in Piscataway.
8: Join daily Garva, October 11th to 19th at 7 PM.
9: Don't miss the Atham Yagya on the 18th, Naam Yagya on the 19th and Sharat Purnima Garba on the 25th.
8: Gather with family and experience the divinity. Visit gayatricenter.org.
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
12: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
13: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
3: हर हफ्ते बॉलीवुड की दुनिया में नए गाने जन्म लेते हैं. कुछ गाने पहली बार सुनते ही दिल में उतर जाते हैं, कुछ धीरे धीरे अपनी जगह बनाते हैं, लेकिन कुछ सिर्फ गाने नहीं होते, वो किसी रात की याद, किसी जर्नी का साउंड ट्रैक या किसी अधूरी कहानी की आवाज बन जाते हैं. उनके पीछे होती हैं ऐसी कहानियां, ऐसे किस्से और ऐसे सवाल जो म्यूजिक खत्म होने के बाद भी हवा में ठहर जाते हैं. हाय, मैं हूं सुरेन सुंदरम एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का बॉलीवुड का सबसे डेफिनेटिव म्यूजिक काउंटडाउन. और आज का जो काउंटडाउन है वो भी एक म्यूजिकल जर्नी है, जहां मिलेंगे नए हिट्स, पुरानी यादें और उन गानों के पीछे छुपे वो राज जिन पर शायद आपने कभी उतना गौर नहीं किया. सो I've got you covered. Number 20 पर है Welcome to the Jungle का ये गाना, ऊंचा लंबा कद, which has been rehashed. लेकिन इस जर्नी की पहली धुन होगी कॉकटेल की माशूका. Turn the volume up. This is the Mirchi Top 20. Let's go.
4: Number 19.

तमन्ना भाटिया की एक्टिंग चॉप्स और स्क्रीन प्रेजेंस अपनी जगह, लेकिन ठुमक ठुमक देख के लगता है कि प्रोड्यूसर्स ने सोचा कि अगर तमन्ना है तो एक डांस नंबर तो बनता है। एंड वन यार इसका ये गाना था जिसने नंबर 18 पर डेब्यू किया। आई ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दिस सॉन्ग लास्ट वीक, लेकिन ट्रेलर देखते हुए मुझे एक ख्याल आया, यार बॉलीवुड ने जंगल को कभी प्रॉपरली खतरनाक बनाया ही नहीं। देखो हॉलीवुड में ऐसी बहुत फिल्में हैं, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट जुरासिक पार्क और द बीस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन आप अगर एक जंगल में हैं या आप एक समंदर में हैं और सामने कोई ऐसा जानवर है जो आपको खा सकता है, बस दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड। किसी भूत की जरूरत नहीं, किसी आत्मा की जरूरत नहीं, प्रकृति यानी नेचर खुद विलन है,

0: टाइगर अटैक्स, जंगल थ्रिलर्स एंड फिर अक्सर हम सुपर नेचुरल की तरफ मुड़ गए। यार इंडिया में इतने घने जंगल हैं, वाइल्ड लाइफ है, डेंजरस एनिमल्स हैं और एक ऑडियंस है जो जेन्युइनली एज ऑफ द सीट सर्वाइवल थ्रिलर देखना चाहेगी, क्योंकि मैं तो देखूंगा। एक फैमिली, एक जंगल और सामने एक जानवर जो विलन नहीं है, बस जानवर है। लेकिन टॉकिंग अबाउट फैमिली, एक और परिवार है जो स्क्रीन पर हमें पागल करने वाला है, एंड दैट इज अजय देवगन यानी कि विजय साळगांवकर का परिवार। दृश्यम 3 का ये गाना विच डेब्यूट लास्ट वीक, दिस वीक इट्स ऑन नंबर 17, विंगंसा
1: नंबर 17। दृश्यों के बाहर नजरों को डाल, संभल कर चलना और खुद को

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: Hello.
2: Yeah, is that Vishal?
1: जी.
2: Vishal, I'm Murthy. I'm calling from Private Limited.
1: जी सर.
2: आपका first round तो हो गया था. आप उस दिन 4 बजे तक रुके थे ऑफिस. Unfortunately, मैं नहीं मिल पाया था आपसे.
1: Yes, sir.
2: By the way, Vishal, आप next month तो join करने में comfortable है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल sir.
2: October mid में अगर मैं बोलूँ तो.
1: जी.
2: अच्छा विशाल, मैं आपसे simple ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि जो first round आपका हुआ उन्होंने काफी impressed थे आपसे, but मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, if we hire you, आप 5 साल के बाद, मान के चलिए आपने आज join कर ली कंपनी, 5 साल के बाद आप कहाँ देखते हैं अपने आप को?
1: सर, मैं 5 साल बाद इतनी मतलब कड़ी मेहनत करूंगा आपकी कंपनी में कि मैं आगे जाके खुद ही कंपनी खड़ी कर सकूं.
2: आर वी फूल आप यहाँ पे आए? और लाइक आप ऐसे सोचिए ना, आप किसी को हायर कर रहे हैं और आप उस पे मेहनत कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, और आप उससे पूछे 5 साल के बाद क्या करोगे, और वो कहे कि 5 साल के बाद तुम्हें छोड़ के अपनी कंपनी खड़ी कर लूंगा ताकि तुम्हारा नुकसान हो.
1: नहीं सर. सर मैं आपके साथ, सर मैं 10 साल तक काम करूंगा आपके साथ, जी जान लगा दूंगा सर, और 10 साल तक आप ही के साथ काम करूंगा सर.
2: अगेन अभी फूल, मतलब 10 साल तक आपके ग्रोथ ही नहीं कर रहे, आप पड़े में नहीं. आप खुद सोचिए, आपने कंपनी खड़ी करी, आपने एक को हायर किया, आपने उम्मीदें करी कि ये बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट एम्प्लॉय है, आपको लगता है ये सही विजन है?
1: सर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ सर.
2: मेरे सर, साथ काम करना चाहते हैं?
1: जी सर, आपकी कंपनी में तरक्की करना चाहता हूँ, जितनी ग्रोथ है आपकी कंपनी में, कहीं नहीं जाऊंगा सर आपको छोड़ के.
2: बिल्कुल पक्का?
1: बिल्कुल सर, पक्की बात है.
2: देख लीजिए
1: जी,
2: 5 साल के बाद की बात कर रहा हूँ मैं.
1: हाँ सर बिल्कुल, जितनी ग्रोथ होगी सर आपकी कंपनी में होगी, आपकी कंपनी में जी जान लगा के कड़ी शिद्दत से मेहनत से दिल से कंपनी की हम ग्रोथ में अपना योगदान,
2: कंपनी की ग्रोथ में आप अपना योगदान देंगे.
1: जी सर.
2: ठीक है, यूर हायर्ड. विशाल भाई, आप जो आपका नंबर दिया था, पर यार विशाल तुम कितने प्यारे हो यार, तुम कितने मासूम हो. सो नाउ वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 इयर्स, टेल मी नाउ.
1: सर मैं फाड़ दूंगा सर, 5 साल बाद अपनी कंपनी बनाऊंगा मैं.
2: यस.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: Kisi zamane mein maa haathon se ghisti, pyar se kootti, muskurakar peesti. अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी. डीप, खाओ तो जानो.
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
7: शादी शॉपिंग का कम्प्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
8: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलन.
9: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
10: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
9: Wait, they can see us on Sunday?
10: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
11: इस बार दशहरा होगी धमाकेदार.
12: वो तो होगी ही, और तामझाम भी होगी दुगना.
13: Yes, only at Indo American Festival INC, 28th Dussehra Festival on Saturday 10th October at Lake Papayani Park, Edison, New Jersey, 1 PM to 8 PM.
11: Join us for marvelous Ram Leela, spectacular Ravan Dahan, cultural programs, Meena Bazaar, and more.
14: For details, call 732-444-8381 or visit dussehra.com.
15: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
16: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
15: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
17: बेटा, शादी next week है, और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ, सिर्फ dialogue ही है. अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
18: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
19: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
20: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
21: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
20: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
21: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
20: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
22: Tera kya hoga, Kalia?
23: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
22: Ab, mirchi kha.
24: Radio Mirchi, it's hot.
25: Only on Mirchi. It's hot. Number 16.

0: कॉकटेल 2 लुक लाइक अ ग्लोबल फिल्म, और ग्लोबल बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी मॉडर्न दिखने की कोशिश में हम अपनी ही आवाज को पुराना समझने लगते हैं। परफेक्ट हिंदी बोलें तो बैकग्राउंड हम्बल लगता है, इंग्लिश मिला दें तो सोफिस्टिकेटेड लगता है। और ये सिर्फ भाषा का सवाल नहीं है, ये अपनी जड़ों को देखने का सवाल है। जावेद अख्तर, उन्होंने इसी डिस्कम्फर्ट को कुछ साल पहले एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सवाल में बदल दिया था।
1: आज अगर आप किसी नौजवान से मिलते हैं, लड़के या लड़की से, जो परफेक्शन से बोल रहा हो, तो आपके सबकॉन्शियस में एक बात पैदा होती है कि किसी गरीब घराने का है, ये कोई हम्बल बैकग्राउंड से आया है। आपका अपनी लैंग्वेज के बारे में ये ओपिनियन हो गई है, अगर वो गलत हिंदी बोलता है तो एक बैकग्राउंड इसका अच्छा होगा। ये बहुत शर्म की बात है कि हम अपनी रूट्स पे इतनी शर्मिंदा हो। कौन सी लैंग्वेज की हम परवाह कर रहे हैं? हमारी तो भाषाएं जो है सिमट रही है सारी की सारी। वो एक दिन थे जब आप उर्दू का गम करते थे, आप तो आप हर हिंदुस्तानी जबान का गम कीजिए। हमारी वोकैबुलरी सिमट गई है, हम बिना अंग्रेजी के 15 वर्ड इस्तेमाल किए हम बात नहीं कर पाते हैं।
0: जावेद साहब की बात सिर्फ हिंदी की नहीं है, बात ये है कि दुनिया के सामने मॉडर्न दिखने के लिए क्या हम अपनी ही जड़ों को अनुकूल समझने लगे हैं। सिनेमा दुनिया से इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन अपनी पहचान छोड़कर ग्लोबल बनना शायद प्रोग्रेस नहीं, एमनीजिया है। और इसलिए कुछ गाने वक्त के साथ पुराने नहीं होते, वो हमें याद दिलाते रहते हैं कि हम कहां से आए हैं। ओम शांति ओम से सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल का वो टाइमलेस एहसास, कंपोज्ड बाय द मैवरिक्स विशालन शेखर, मैं अगर कहूं रिटन बाय जावेद साहब। Thank you for making us rewind to our thoughts. This is my rewind track of the week.
2: Top 20. Rewind.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: This festive season, Kalal of New Jersey presents two mesmerizing nights.
4: October 17th, the voice behind the famous Billo Rani, Richa Sharma.
3: And October 18th, the voice behind Barish, Ash King. Book individual tickets or packages now at kalal.com. That is KALLOL.com. Or call 917-440-9266.
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया, अ थाउजेंड ईयर ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ खानदानी शेफ्स रेसिपीज कम्स द नाम। Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
8: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington।
9: इस साल बच्चे की पार्टी बनाइए अनफॉरगेटेबल। कम गेट योर क्राफ्टी हैंड्स ऑन एट आवर क्रिएटिव स्टूडियो इन मार्लबोरो। 26 प्लस DIY प्रोजेक्ट्स, स्लाइम से लेकर क्राफ्ट्स तक, डिजाइन फॉर एवरी चाइल्ड्स एज एंड थीम। साथ में पिज्जा, पॉपकॉर्न और अनलिमिटेड फन। विजिट द craftyhands.com और कॉल 732-397-0057।
10: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
11: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 Oak Tree Road, Islington, न्यू जर्सी।
12: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
13: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
12: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
14: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
15: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
16: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
15: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
17: एक ही होता है।
15: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
18: नंबर 15।

अरिजीत की आवाज को धीरे धीरे गुड बाय कहने का दर्द अपनी जगह है, लेकिन इसी वक्त जिंदगी ने एक छोटा सा सरप्राइज भी दिया है। कभी कभी बचपन किसी फोटोग्राफ में नहीं मिलता, एक आवाज में मिल जाता है।

0: बस ये दो लाइनें, और पता नहीं क्यों एकदम से वो घर याद आ जाता है, वो उम्र जब गाने सुनने के लिए कोई प्लेलिस्ट नहीं होती थी, वो कैसेट्स, वो सीडीज, वो टीवी पर आया गाना, वही साउंड ट्रैक था। लकी अली को सुनते हुए हमने सिर्फ गाने नहीं सुने थे, हम बड़े हुए थे। और शायद इसलिए आज भी अगर कोई ओ सनम किसी हाउस पार्टी में गा देता है या किसी इंटीमेट कॉन्सर्ट में अचानक वो आवाज सुनाई देती है, तो हम गाने को जज नहीं करते, हम उस पल में लौट जाते हैं। इसलिए दृश्यम 3 के मेकर्स ने लकी अली से मुस्कुरा दो गवाया है, क्योंकि लकी अली जब गाते हैं ना तो कॉम्पोजिशन पीछे रह जाती है, लिरिक्स भी पीछे रह जाते हैं, सामने हम खड़े होते हैं अपनी ही पुरानी जिंदगी के सामने। और मुझे इस गाने को एनालाइज नहीं करना है यार, ना इसका म्यूजिक डाइसेक्ट करना है, ना लिरिक्स को मार्क्स देने हैं, बस एक बार फिर उस लड़के के साथ बैठना है जो कभी लकी अली को सुनता था, गुनगुनाता था, और उसे पता भी नहीं था कि वो दिन एक दिन याद आएगा। दृश्यम 3 से लकी अली का गाया मुस्कुरा दो, डेब्यूइंग ऑन नंबर 13।
1: ये चांद तारे लाके तुम्हारे कमरे की छत पे मैं सजा दूं।

सांसों की माला। कुछ गाने सिर्फ सुनाई नहीं देते, वो आपको किसी और वक्त में ले जाते हैं और उस सफर में सिर्फ मेलेडी नहीं होती, आवाज, इंस्ट्रूमेंट्स, रिदम, हर चीज मिलकर एक जमाना बनाती है। अब नेक्स्ट गाने को ही देखिए, तबाही, टॉक्सिक, 90s में सेट एक फिल्म, लेकिन उसका साउंड आज का है। तो फिर सवाल ये है कि फिल्म को उसके वक्त का बनाता क्या है? शायद संजय लीला भंसाली से बेहतर कोई फिल्म मेकर इस सवाल का जवाब नहीं जानता।

इनकी धुन सुनते ही सिर्फ गाने याद नहीं आते, पूरी दुनिया याद आ जाती है। खामोशी में सन्नाटा भी सुर बन जाता है। देवदास में इंतजार ट्रेजेडी बन जाती है। बाजीराव मस्तानी में मोहब्बत बगावत बन जाती है। यही संजय लीला भंसाली का कमाल है। वो म्यूजिक से कैरेक्टर की फीलिंग नहीं, उसकी पूरी इनर वर्ल्ड दिखा देते हैं। कभी कभी लगता है वो फिल्म डायरेक्ट नहीं करते, वो एक कॉम्पोजिशन कंडक्ट कर रहे होते हैं जो फिर एक फिल्म बन जाती है। लव एंड वॉर उनकी आने वाली फिल्म, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा, लेकिन अभी के लिए इस बात का सबसे हॉन्टिंग एग्जाम्पल मेरे लिए देवदास का वो गाना है जहाँ इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं लेता और मोहब्बत मरने का नाम नहीं लेती। सिलसिला ये चाहत का, माय पिक।

0: चिकन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
5: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
4: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
7: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
9: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
10: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
9: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
11: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
12: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
12: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
11: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
13: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स।
14: तेरा क्या होगा कालिया?
15: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
14: अब मिर्ची खा।
16: Radio Mirchi, it's hot.

तीन साल तक रणबीर कपूर की एक फिल्म का इंतजार किया और अब अगले तीन महीनों में दो फिल्में मिलने वाली हैं, रामायण एंड देन लव एंड वॉर। एक तरफ संजय लीला भंसाली रीयूनाइट्स विद रणबीर कपूर आफ्टर 19 इयर्स एंड दूसरी तरफ यू गॉट अ रियूनियन दैट्स गॉट एवरीवन टॉकिंग, क्योंकि 21 साल बाद एक ऐसी जोड़ी लौट रही है जिसके गाने सिर्फ हिट नहीं थे, वो पूरी स्क्रीन इमेज बना रहे थे, इमरान हाशमी एंड हिमेश रेशमिया। 2005 में इसी कॉम्बिनेशन ने आशिक बनाया आपने दिया था और हिमेश ने इमरान के लिए जो म्यूजिक बनाया वो सटल होने की कोशिश नहीं कर रहा था, इट वॉज ब्रूटली कमर्शियल, इट वॉज इन योर फेस और रिपीट पे चलने के लिए बना था।

इसके अलावा देयर वाज आल्सो आपकी कशिश इन द सेम एल्बम एंड देन वी गॉट अ बैंगर जो सिर्फ गाना नहीं था उसने इमरान की स्क्रीन इमेज को एक म्यूजिक

0: और फिर वक्त ने वही धुन दोबारा छेड़ दी। 21 साल बाद वही डायरेक्टर आदित्य दत्त, वही कंपोजर मिस्टर रेशमिया एंड वही इमरान हाशमी। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ पुरानी यादों की नहीं है, हिमेश खुद गा रहे हैं इमरान के लिए। अफसाना बनाया आपने, जैसे आशिक बनाया आपने ने इमरान को एक म्यूजिकल इमेज दी थी, वैसे ही अफसाना बनाया आपने उस केमिस्ट्री का नया चैप्टर लिखने आ रही है। तो क्या ये रियूनियन सिर्फ नॉस्टैल्जिया है या फिर इमरान और हिमेश की वो पुरानी म्यूजिकल केमिस्ट्री अब भी कमाल करेगी। बाय द वे, हिमेश जी से एक और रियूनियन की कहानी भी सुनेंगे जो सूरज बड़जात्या के साथ उनकी हो रही है, लेकिन पहले देखते हैं कि क्या इमरान हिमेश का ये कॉम्बो वो केमिस्ट्री रिपीट पे चला सकता है। दिस वन हैपेंस टू बी फ्रॉम गन मास्टर 69, ये है अफसाना बनाया आपने।
1: नंबर 9।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो
2: दे देना यार मेरे पैसे 10,000 रुपए तूने बहुत
3: ए, यार ऐसे कैसे दे दूं मैं अरे तो मैंने
1: हेलो हेलो भाई साहब
3: आप एक सेकंड होल्ड करो ना मैं आपसे बात करूंगा कितने कह रहा है
2: 5 दे दे भाई
3: 5 पक्की बात है 5 लौट आएगा
2: मैं 5 लौटाऊंगा
3: भाई साहब इसने क्या कही है अभी
1: 5,000 लौटाऊंगा
3: 5,000 लौटाऊंगा ठीक है पक्की बात है ये
2: पक्की बात है
3: देखो मुझसे गोली मत दियो फोन मत कर पहले बता रहा हूँ
2: नहीं करूंगा
1: अरे मुझे क्या फोन किया ये
3: अरे मैं आपको बता रहा हूँ एक सेकंड को देख 5,000 पूरे दे रहा हूँ मैं कब तक दे देगा
2: 20 दिन बाद ले लियो चल पैसे
3: भाई साहब कितने दिन कह रहा है ये
1: 20 दिन बोल रहा
3: है 20 दिन कह रहा है ना तू
2: 20 दिन
3: कह रहा है
1: अरे तो मैं क्या करूँ
3: भाई साहब जरूरी तो आपसे बात करनी है ये तो बीच में आ गया एक सेकंड होल्ड करो ये ले ये 10-10 के हैं 500 गिन ले एक बार गिन
2: ठीक है पूरे 10 नोट दिए
3: भाई साहब कितने नोट दिए इसे
1: 10
3: नोट दिए हैं फोन मत नहीं करेगा तू
2: फोन मत नहीं करूंगा
3: पक्की बात है
2: ना पक्का वापस ले
3: फोन मत करियो
2: यार नीयत थोड़ी खराब है मेरी
3: तो तू कर भी नहीं सकता सुन ले क्योंकि ये जो भाई साहब है ये गवाह है
2: हाँ तो वो तो है ही
3: भाई साहब आप गवाह हो ना आप गवाह हो
2: मेरी नीयत में
1: कोई गवाह
3: नहीं नहीं बात सुनो अगर तूने पैसे ना दिए ये भाई से ले लूंगा मैं जो फोन पे ये गवाह है
1: खुद कह रहे हैं हेलो
3: हाँ फोन बंद कर दिया उसने पैसे निकालो अब तुम
1: अरे मैं क्यों निकालू जान ना अच्छा, पहचान पैसे तुम मेरे से मांग रहे हो
3: तुमने कहा नहीं किया
1: अरे तुम
3: भाई साहब गवाह बने हो गवाह तुमने खुद कहा 10 नोट दिए
1: खा के थोड़ी दी है
3: ओ हेलो 5,000 पूरे निकलवा लूंगा बता रहा हूँ मैं
1: अरे मैं कहाँ से निकालू तूने मेरे को पैसे
3: अरे तो जबरदस्ती मत करियो गवाह क्यों बना था तूने कहा 10 नोट दिए
1: हाँ तो मैंने तो बताया था तुम मेरे सामने गिनती कर रहे हो मैं तो बताऊंगा ना
3: उसका तो फोन बन जा रहा है तू देगा बता रहा हूँ
1: हेलो
2: अरे भैया
1: कौन
2: अरे वो पैसे लिए थे मैंने उससे अरे वो पैसे मांगे ना देना मत तुम उसको बिल्कुल भी
1: पैसे मैं क्यों दूंगा तुम दोगे तुमने लिए
2: नहीं नहीं गवाह तो आप है ना देने तो आपके बनते हैं वैसे तो
1: मैं दूंगा भी नहीं मेरा कोई मतलब नहीं बनता देने का
2: यार सारी बात ठीक है पर गवाह क्यों बने बीच में आप
1: पागल वागल हो क्या हेलो
3: पैसे तू देगा ये बता रहा हूँ तू गवाह बना था
1: अबे तो उसने फोन ऑन कर लिया उससे बात करना है यार तुम मेरे को क्यों बार बार फोन कर रहे हैं मैंने थोड़ी पैसे लिए तेरे
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
7: I am not going to bed with you ever again.
6: But why? What did I do?
7: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
6: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
7: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
6: Yes, yes, yes, come soon. Honey!
7: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
6: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
8: सोना खरीदने के सोच रहे हैं आरके ज्वेल्स चलिए इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस
9: सुनो ब्राइड्स अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
10: तो आइए फैशन क्वीन यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन
10: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इज़िलन
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: Durga Puja ka celebration ho aur Kolkata ka flavor na ho, aisa kaise?
14: Maitri brings you thak, puja, aarti, bhog, sindoor khela, cultural programs and a delicious dinner. Plus, live music by Mahalakshmi Iyer, Ankita Bhattacharya and Shubhadeep.
15: October 24th and 25th, Hammerhold Upper Elementary School, East Brunswick, New Jersey. Register today at my3usa.org.
16: Listener, mein back to back gana sunega. Back to back gana sunega.
0: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.
17: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 7

रातों में आना फ्रॉम द मूवी वाइब डायरेक्टेड बाय कुणाल खेमू। और पहले ही कह देता हूं आई लव कुणाल, आई थिंक ही इज अ सुप्रीमली टैलेंटेड एक्टर एंड डायरेक्टर। अनफॉर्चुनेटली वाइब वो ब्लॉकबस्टर नहीं बन पाई जो शायद वो बन सकती थी, लेकिन इस गाने को सुन के एक चीज बार बार खटक रही है कि यार फिल्म का पहला गाना एल्बम का सबसे अच्छा गाना होना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसका काम कुछ और ही है। देखो, पहला गाना फिल्म का हैंडशेक होता है। आप ऑडियंस को पहली बार उस दुनिया में मिलते हो, उन्हें बताना चाहते हो कि फिल्म किस मूड की है, इसका तापमान कैसा है और क्या इसके लिए थिएटर जाना इंटरेस्टिंग होगा। और देखो, धुरंधर का एग्जाम्पल देते देते मैं तो थक गया हूं तो छोड़ देते हैं, लेकिन इसके अलावा कितने एग्जाम्पल्स हैं। रिमेंबर द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ ये जवानी है दीवानी, या जब बजरंगी भाईजान में हम पहली बार पवन से मिले थे।

0: चाहता है।
1: इनमें से हर गाने ने एल्बम की पूरी कहानी नहीं सुनाई, बस इतना किया कि फिल्म की दुनिया का दरवाजा खोल दिया। और फिल्म मेकर्स के लिए मेरी एक बहुत ही सिंपल सी नसीहत है, पहले गाने पर कॉम्प्रोमाइज मत करो। उसे हिट होना है, कैची होना है, लेकिन सबसे जरूरी उसमें फिल्म की एक झलक होनी है। प्रीतम दा ने ये बखूबी किया इन अनदर फिल्म जिससे हमें उस दुनिया का एहसास हुआ। दैट फिल्म वाज दिलवाले और उसका पहला गाना था गेरुआ। दिस वाज ऑल अबाउट शाहरुख एंड काजोल हु आर मेकिंग अ रिटर्न टू द सिल्वर स्क्रीन। अरिजीत सिंह अंतरा मित्रा की आवाज में ये है मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द वीक।
2: स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए Lion Mortgage, the king of mortgage industry.
4: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
2: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
7: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: Oh no!
11: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
12: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
13: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़िलिन, न्यू जर्सी।
14: तेरा क्या होगा कालिया?
15: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
14: अब मिर्ची खा।
16: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
17: नंबर 5।

0: कुछ फिल्म मेकर्स की दुनिया इतनी खास होती है कि उस दुनिया के लिए हिट गाना बनाना अपने आप में एक चैलेंज बन जाता है। सूरज बड़जात्या की दुनिया भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ गाना सिर्फ कैची नहीं हो सकता, उसे सिचुएशन में ही रहना पड़ता है, कहानी के साथ चलना पड़ता है और फिर भी हिट होना पड़ता है। ये प्रेम मोलिया पिछले हफ्ते नंबर 9 पर डेब्यू हुआ था इसका, लेकिन इस हफ्ते इसने छलांग मारी है टू नंबर 5, तो प्रूफ तो कर दिया है। लेकिन हिमेश रेशमिया के लिए सूरज बड़जात्या के साथ काम करने का सबसे बड़ा चैलेंज आखिर है क्या?
1: मैं आर्ट के साथ थोड़ा सा कमर्शियली भी सोचता हूँ, और सूरज जी के साथ अपना म्यूजिक फिट करना उनकी पिक्चर में वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है, बिकॉज वो अपनी सिचुएशन से नहीं हिलते। और मेरे लिए ये हो जाता है कि किसी भी तरह ऑडियो वैल्यू हो जाए, जो पहले बहुत सीमलेसली अगर आप देखें तो होता था, बिकॉज एक दायरा था जिसमें हम 3-4 लोग इंटरेक्ट करते थे, म्यूजिक बनाते थे और म्यूजिक को देखने का जो एक माहौल था बहुत बहुत क्लियर था, इस रेंज में सिंगर गाएगा। लेकिन आज बहुत चीजें बदल गई हैं, 7 लाख सिंगर्स हैं, 300 गाने रोज रिलीज होते हैं, उसमें एक ब्लॉकबस्टर म्यूजिक देना जो एक म्यूजिक डायरेक्टर का फर्ज होना चाहिए, कि अगर डायरेक्टर ने आपको अप्रोच किया है तो आप अपना काम उस शिद्दत से करो, बट उनके वर्ल्ड को चेंज मत करो, लेकिन अपना ऑडियो वैल्यू भी फॉलो करो। बिकॉज मुझे ऑलवेज ऐसा लगता है कि सिर्फ सिचुएशन को अगर एक म्यूजिक डायरेक्टर फॉलो करता है तो बहुत अच्छी बात है, वो ग्रेट बात है, बट देन मेरे माइंडसेट से वो एक बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोजर है कि भाई सिर्फ फॉलो करता है, लेकिन आपको लिया गया है क्योंकि आपको हिट गाने भी चाहिए। लेकिन सूरज जी के हम फैन भी हैं और एग्री भी करते हैं, और वो चाहे कितना भी बड़ा हिट गाना हो वो छोड़ देंगे, वो नहीं लेने वाले ऐसे कि मैं फिट कर लूं।
0: यानी फॉर्मूला सिंपल नहीं है, सूरज जी की दुनिया से बाहर भी नहीं जाना और उसके अंदर रहकर गाने को इतना बड़ा बनाना है कि वो दुनिया के बाहर भी सुना जाए। वाव, और शायद इसी बैलेंस का रिजल्ट है ये प्रेम मोलिया का नंबर 9 से नंबर 5 तक आना। फिर आता है एक ऐसा गाना जिसका कनेक्शन अपनी फिल्म से कम और 90s की यादों से ज्यादा है। आंखों से तूने ये क्या कह दिया इज ऑन नंबर 4, और अब सरप्राइज सरप्राइज एंड ऑल्सो अ शॉक कि पिछले हफ्ते का नंबर 1 गाना इस हफ्ते 2 स्पॉट्स नीचे है, किसने सोचा था, बट हियर इट इज ऑन नंबर 3, आवारापन 2 का एंड ऑल्सो आवारापन 1 का, तेरा मेरा रिश्ता।
2: नंबर 3।

0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसे लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजय बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज Only on Mirchi, it's hot.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: नवरात एकत स्पिरिट
5: गायत्री चेतना सेंटर कम्युनिटी ने साथ ही लावी रहा छे पिस्का टवे मा
4: रमो गरबा डेली 11-19 ऑक्टोबर सांजे 7 कलाक थी।
5: तारीख 18 ना रोज 8 यज्ञ, 19 9 यज्ञ अने 25 शरद पूर्णिमा गरबा ने मिस ना करता तो फैमिली साथे जोड़ाओ अने अनुभव डिविनिटी। विजिट gayatricenter.org टुडे।
6: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
9: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स।
10: Only on Mirchi. It's hot.
11: Number 2.
12: Bandha.

वारूम नंबर 3 से नंबर 2 पर इस हफ्ते। और शायद इस गाने की खूबसूरती इसी में है, ये आपको एक लव स्टोरी का एहसास तो देता है लेकिन उसकी पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। बाकी कहानी आप खुद लिखते हैं। लेकिन कुछ फिल्म मेकर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ लव स्टोरी नहीं सुनाते, वो उसके लिए एक पूरी दुनिया खड़ी कर देते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां मोहब्बत सिर्फ 2 लोगों के बीच नहीं होती, वो महलों में गूंजती है, पर्दों के पीछे छुपती है, शीशों में टूटती है और कभी कभी जंग के बीच भी जिंदा रहती है। वो बुलंद इमारतें, वो भारी पर्दे, वो शीशे, वो झूमर, वो गहने और वो घोड़े स्क्रीन पर आते ही कहानी को एक और जमाने में ले जाते हैं। यही तो संजय लीला भंसाली की दुनिया है, एक ऐसा भव्य दृश्य संसार जहां हर फ्रेम अपनी अलग पहचान रखता है। लेकिन अब भंसाली साहब खुद कह रहे हैं, इस बार ना इमारतें होंगी, ना पर्दे होंगे, ना घोड़े होंगे। लव एंड वॉर, एक कंटेम्प्रेरी कहानी, विंटेज फ्रेम, मिलिट्री यूनिफॉर्म्स और बीच में रणबीर कपूर, विकी कौशल और आलिया भट्ट। और यहीं से लव एंड वॉर का सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, जब भंसाली अपने पहचाने हुए महल, पर्दे, झूमर और घोड़ों को पीछे हटा देते हैं तो क्या बचता है? 3 एक्टर्स, उनके चेहरे, उनकी आवाज, उनकी बॉडी लैंग्वेज और एक दूसरे के सामने उनकी मौजूदगी। यानी लव एंड वॉर में भंसाली साहब अपने भव्य विजुअल वर्ल्ड को दोहराने के बजाय एक्टिंग और एक्टर्स की प्रेजेंस को एक्सपेरिमेंट बना रहे हैं। लेकिन भंसाली साहब के लिए असली सवाल शायद कुछ और है, जब दुनिया का स्पेक्टिकल हटा दिया जाए, क्या 3 एक्टर्स खुद स्पेक्टिकल बन सकते हैं? क्या रणबीर, विकी और आलिया अपनी परफॉर्मेंस से वो स्केल पैदा कर सकते हैं जो पहले भंसाली साहब के मैग्नम ओपसेस ने क्रिएट किया था? और इसलिए लव एंड वॉर सिर्फ संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म नहीं लगती, ये उनका अपनी ही पहचान से जुड़ा सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट हो सकता है। भव्यता को फ्रेम से हटाकर उसे एक्टर्स के चेहरों और परफॉर्मेंसेस में ढूंढने का एक्सपेरिमेंट। और शायद बॉलीवुड का स्पेक्टिकल भी बदल रहा है, चीजें नई हो रही हैं, लेकिन कुछ पुरानी चीजें फिर से नई लग रही हैं। इस हफ्ते एक बार फिर से चोटी पर, शिखर पर, धुरंधर का गहरा हुआ बाय अरिजीत सिंह एंड शाश्वत सचदेव, द अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 yet again। नंबर 1।

0: तेरा मेरा रिश्ता अब नंबर वन नहीं है, लेकिन कोई अफसोस भी नहीं है, क्योंकि जो गाना उसकी जगह आया है वो अपने नाम की तरह वक्त के साथ और गहरा हुआ है। That was गहरा हुआ from धुरंधर once again on number one, लेकिन बस एक और हफ्ता, एक और सफर और बॉलीवुड की कहानी में कुछ नए पन्ने जुड़ गए। So until the next time we meet here on the Mirchi Top 20, this is your boy Suren, over and out.
1: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.